सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 28 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 37 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर अब हमारी प्रथम सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। प्रातः की बेला में वंदन उस परमात्मा का जो प्रत्येक जीवात्मा में स्वयं उपस्थित है।

हमसे भला ऐसा क्या अपराध बना जो नंदलाल सहज दर्शन नहीं देते। यमुना के कूल पर बैठी गोपांगनाओं के चित्त की चिंता का यही कारण उन्हें नित प्रति क्षीण कर रहा है। ऐसे में मधुरवंशी की ध्वनि ही उनका सहारा बनती है, जिससे सुनते हुए वे नंद कुमार तक पहुंच ही जाती हैं।

न जाने कितने शुभ अशुभ कर्म जाने अनजाने मुझसे हुए हैं, परंतु अब वो सब तुम्हें ही अर्पित हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण, मैं, मेरा परिवार, मुझसे संबंधित सभी केवल तुम्हारे ही आश्रय हैं। इसलिए हमें उबारना या डुबाना अब केवल आपके ही तो हाथ है।

अंतर मन में बसे शिव भगवान की कृपा से ही इस समस्त संसार में प्रत्येक जीव में वो स्पष्ट दिखलाई पड़ जाते हैं।

आज के कार्यक्रम वंदना की भक्ति रचनाओं को सर प्रदान किया हरिओम शरण लक्ष्मी शंकर मोहम्मद रफी और किशोरी अमोनकर ने, और आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना संवेद स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम

0: वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। जैन ग्रंथ समाधि शतक से पाठ आपको सुनवा रहे हैं। आलेख और वाचन स्वर दामोदर शास्त्री का है।
1: उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमो थवा मथित्वात्मानमात्मा इव जायते निर्यथा तरुहु। आत्मा से परमात्मा बनने का ये उपाय है कि इस आत्मा की निरंतर उपासना की जाए। जिस प्रकार वृक्ष की लकड़ियों में परस्पर मंथन करने से आग उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही ये संसारी आत्मा ही निरंतर आध्यात्मिक साधना करते करते स्वयं परमात्मा बन जाती है। बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। इस संसारी प्राणी की आध्यात्मिक यात्रा में तीन पड़ाव होते हैं। पहला है बहिरात्मा, दूसरा है अंतरात्मा और तीसरा अंतिम जो लक्ष्य है वह है परमात्मा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रम से बहिरात्मा से अंतरात्मा की स्थिति पर पहुंचे और अंतरात्मा की स्थिति से भी परमात्मा बनने का प्रयास करे। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रांतिरांतरः चित्तदोषात्म विभ्रांति परमात्माति निर्मलः। बहिरात्मा वह प्राथमिक स्थिति है जब प्राणी इस देहादि को आत्मा से भिन्न पदार्थों को आत्मा मान लेता है। इससे ऊपर की स्थिति है अंतरात्मा। इस स्थिति में साधक को राग द्वेष देह आत्मा इन पदार्थों के परस्पर भेद का पूर्ण विज्ञान हो जाता है और सबसे श्रेष्ठ अंतिम स्थिति है परमात्मा पद की। यह सबसे निर्मल और परम शुद्ध स्थिति है। यो न वेत्ति परम देहाद एवमात्मानमव्ययम् लभते सन निर्वाणम तप्त्वापि परमं तपः। जो व्यक्ति देह में और आत्मा में भेद नहीं समझ लेता, वह चाहे कितना भी कठिन तप करे, घोर तपश्चर्या करे, कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। राग द्वेषादि कल्लोलैः अलोलम यन्मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम सतत्वम नेतरो जनः। परमात्म तत्व का साक्षात्कार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके निर्मल मन रूपी जल में पूर्णतः शांति रहती है और वहां राग द्वेष की तरंगे नहीं उठती और मन अत्यंत शांत रहता है, कभी भी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। अविद्याभ्यास संस्कारैः अवसंक्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारैः स्वतस्तत्वेव तिष्ठते। जो मन अविद्या के संस्कारों से अज्ञान के संस्कारों में पड़कर सांसारिक विषयों में भटकता रहता है, उसी मन में अगर ज्ञान के संस्कार डाल दिए जाएं, तो वह स्वतः परमात्मत्व की साधना के लिए स्थिर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास कर ज्ञान के संस्कार मन में डालने चाहिए ताकि परमात्मत्व की प्राप्ति अत्यंत सरलता से हो जाए।
0: प्रकाश किरण, इस कार्यक्रम में आज आपने सुना जैन ग्रंथ समाधि शतक से पाठ। आलेख और वाचन स्वर दामोदर शास्त्री का था। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है।

श्री रामचरित मानस गान। आज के संगीतबद्ध प्रसंग को स्वर दिया है रविंद्र साठे और बशीर अहमद ने। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, क्योंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानी और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज के दोनों सभाओं में अनुप्रसारित और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज दिन में 11 बजे से आप सुन सकेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता से सीधे संवाद का कार्यक्रम मन की बात। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 6:30 से आप सुन सकेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर से आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। इस दौरान आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऐप के जरिए सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हमारे कार्यक्रम आपको मिलते रहेंगे। रात्रि 10 बजे का समय होगा कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का।

प्रातः के 6:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय रहेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन के दुधारू पशुओं में दुष्परिणाम। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। संस्कृत में समाचारों का समय होगा प्रातः 6:55 का, और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर आएंगे प्रातः 7 बजे से। कार्यक्रम ब्रजमाधुरी का समय होगा प्रातः 7:31 का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपने फरमाइशी लोकगीतों को ब्रज लोक लहरी के क्रम में। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि का समय होगा प्रातः 8:30 का, और सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 9 बजे। सामयिक चर्चा आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रातः 9:15 पर। कार्यक्रम आबोहवा आप सुन सकेंगे प्रातः 9:25 पर, और 9:30 का समय होगा कार्यक्रम बाल गोपाल का। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास और खुशहाल बचपन और मानसिक स्वास्थ्य। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे वार्ता खेलों का महत्व। वार्ताकार होंगी काजल अग्रवाल। साथ ही सुनेगा एक और वार्ता इंटरनेट के बारे में। वार्ताकार होंगी मनोरमा, और इसी कार्यक्रम में बच्चे सुनते हैं बच्चों के ही मुख से कविता कहानी और चुटकुले भी। तो कार्यक्रम का समय याद रखिए प्रातः 9:30 से। दिन में 10 बजे से हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी। इस काव्य गोष्ठी में प्रतिभागी गण होंगे पूनम शर्मा, रेणु उपाध्याय, और संचालन करेंगे शुभम त्यागी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 12 बजे, और कार्यक्रम ब्रज लोक गीत में आज आप सुनेंगे ब्रजेंद्र तिवारी की गाए हुए कुछ लोक गीत दोपहर 12:30 से। दिन में 1:10 का समय होगा कार्यक्रम इस मास का गीत का, बदलती हवा। सुनिएगा मीना श्रीवास्तव की लिखी हुई ये झलकी, प्रस्तुति होगी आरके त्रिपाठी की। कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ आप सुनेंगे दोपहर 1:30 से। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे दोपहर 1:45 पर, और सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर। 3 बजे हमारी पहली सभा का समापन होगा। दूसरी सभा का प्रारंभ होगा संध्या 5:30 से कार्यक्रम युवाणी के साथ। कार्यक्रम युवाणी में आज की बात का विषय रहेगा पीवी नरसिंह राव जयंती और डिजिटल तकनीक का एकीकरण। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे एक नाटिका कैंसर। आलेख डॉक्टर तपेश चतुर्वेदी का होगा, प्रस्तुति आर के पोद्दार की होगी। कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण का समय होगा संध्या 6:15 का, और इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लाभ और खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। इस कार्यक्रम में

0: श्रोता सुन सकेंगे मन भावन ब्रजलोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम भी। संध्या 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम संध्या वंदन और 7:05 का समय रहेगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम का। शाम सुहानी कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 7:31 पर और एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:30 पर। सुहाने तराने ये कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 9:15 पर और 9:30 का समय रहेगा सबरस कार्यक्रम का। रात्रि में 11:10 पर हमारी प्रथम सभा का क्षमा कीजिए सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन के दुधारू पशुओं में दुष्परिणाम, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन का गाय और भैंस के स्वास्थ्य पर क्या दुष्परिणाम होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अक्सर किसान या पशुपालक भाई सुई लगाकर दूध निकालते हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन नाम के एक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो शरीर के क्रिया विज्ञान को सीधे प्रभावित करता है, शरीर की विभिन्न ग्रंथियों में संकुचन उत्पन्न करता है। प्राकृतिक रूप से संकुचन की आवश्यकता बच्चे के जन्म के समय, गर्भाशय में तथा दूध उतारते समय पशु के दुग्ध संस्थान में एल्युवेलाई नामक ग्रंथि में होती है। प्राकृतिक रूप से यह हार्मोन विभिन्न ग्रंथियों में संकुचन उत्पन्न करने के लिए समय समय पर आवश्यकता के अनुसार शरीर से श्रावित किया जाता है। गाय और भैंस प्रजाति के मादा पशुओं में गर्भाशय के संकुचन की आवश्यकता तब होती है जब वह बच्चे को जन्म देती है। प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में यह हार्मोन श्रावित होता है तथा बच्चे का सकुशल जन्म हो जाता है। इसी प्रकार दूध निकालते समय इस हार्मोन की आवश्यकता होती है जब गाय या भैंस के स्तनों को लबारे या मनुष्य द्वारा खींचा, चूसा या सहलाया जाता है, तब विभिन्न शारीरिक क्रिया विज्ञानी प्रतिक्रियाओं के चलते यह हार्मोन अपने आप श्रावित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीटोसिन हार्मोन गाय या भैंस के दुग्ध संस्थान में स्थित एल्युवेलाई नामक ग्रंथि को संकुचित कर देता है। इस ग्रंथि में दूध भंडारित रहता है, इस प्रकार वह दूध स्तनों में आ जाता है। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हार्मोन की शरीर के अंदर उम्र केवल 1 से 5 मिनट तक होती है। प्राकृतिक रूप से इसे लीवर और गुर्दे यानी किडनी द्वारा रक्त से पृथक करके निकाला जाता है। प्राकृतिक रूप से इस हार्मोन की रक्त में उतनी ही मात्रा श्रावित होती है जितनी वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है, अतः ऐसी परिस्थिति में इसका पशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अप्राकृतिक रूप से अर्थात इंजेक्शन के रूप में इस हार्मोन की अत्यधिक मात्रा शरीर में पहुंचा दी जाती है, जिससे यह हार्मोन शरीर की अन्य ग्रंथियों में भी अवांछनीय संकुचन उत्पन्न कर देता है। इसे रक्त से हटाने के लिए लीवर तथा गुर्दों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, अतः इसका सीधा प्रभाव लीवर, गुर्दों तथा अन्य ग्रंथियों पर पड़ता है तथा इसके खराब हो जाने की आशंका बनी रहती है। अब ऐसे पशु का दूध जिसे अत्यधिक मात्रा में एवं प्रतिदिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसके कच्चे दूध के सेवन से लवारों तथा मनुष्य के शरीर में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा वे सभी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं जो गाय या भैंस को अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिए जाने से उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन की अत्यधिक मात्रा का सीधा सीधा कुप्रभाव गर्भाशय तथा भ्रूण की स्थिति पर पड़ता है। इस हार्मोन के दिए जाने से गर्भाशय में संकुचन प्रारंभ हो जाता है, जिससे गर्भाशय तथा भ्रूण को चोट लगती है। कई बार यह हार्मोन भ्रूण की मौत का कारण भी बन जाता है। गर्भित पशुओं में इस हार्मोन का प्रतिदिन एवं अत्यधिक उपयोग करने से गर्भपात हो सकता है तथा कभी कभी गर्भाशय भी बाहर आ जाता है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

मोहम्मद रफ़ी गीता दत्त की आवाज़ों में आपने सुना मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था ओपी नैयर का। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बरसात से। गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे की, और कार्यक्रम का ये अगला गीत सुने मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है भरत व्यास ने, संगीत है आदि नारायण राव का। इस गीत को हम ले रहे हैं फिल्म सुजाता से।

मोहम्मद रफ़ी के सुर में आपने सुना सुजाता फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था ST बर्मन का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म नौकर से। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

नौकर इस फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले के स्वर में। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म स्वामी से।

0: लता मंगेशकर के गए हुए स्वामी फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत तब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
2: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा। दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्ध नगर में 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास।

0: प्रयास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के नवनिर्मित मुख्य प्रशासनिक भवन समेत 2478 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमी कंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहाँ बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत पहले पीसीबी सर्किट आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए,
3: तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
4: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
5: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे

0: अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान में दी गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मा कुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। कुशीनगर में कल दोपहर एक तेज रफ्तार कार और बाइक में हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। कसिया क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यह हादसा अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के हाटा पिपराइच मार्ग पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश के जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, बांदा, संभल, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा समेत आसपास के जनपदों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आज के कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में आपके संग मैं हूँ, आपके रेडियो सखा ज्योति शर्मा। और आज के जा कार्यक्रम में आए गए हैं, हम सब मिलकर जुड़ गए हैं और ब्रजमाधुरी को इंतज़ार तो हमारे सभी श्रोता कर रहे हैं। और आज बात विशेष है, क्यों? आज मौसम बड़ो अच्छे है गए है, नेकात फुहार बरस गई है, तो गर्मी की जो तपिश हती वो नेक आनंद में बदल गई है। और भैयाओं, समय तो ऐसे ही है, नेक में बारिश हो जाए, नेक में गर्मी पड़े, जीवन ऐसो ही है। नेक सी समस्या लगे तो दुख हो जाए है, और नेक सी प्रसन्नता मिले है तो लगे कि जैसे अच्छो कुछ है ही ना है। जीवन परिवर्तनशील है और समय के हाथ में ही हम सब रहे हैं, तो समय के साथ तो हम सब है ही हैं। जहाँ समय में ही अपने प्रसन्नता को अनुभव करने को आगे अगर हम प्रयास करें तो जीवन बड़े ही सुखमय है जाए, बड़े प्रसन्न हम है जाए। और जब हम प्रसन्न होंगे तो सबरे जो हमारे आसपास के लोग जुड़ जाए हैं उन सबको भी हम प्रसन्न रखेंगे। तो अब अपने कार्यक्रम में तो हम जुड़ गए हैं, अब आप सबके संदेशन के संग आज को कार्यक्रम तो आपको पता ही है। आज फरमाइशी लोकगीतन को कार्यक्रम है गो ब्रज लोक लहरी। तो आपके जो संदेश लगातार आए रहे हैं इनको पढ़वे को क्रम शुरू करें। तो सबसे पहले संदेश आज को पढ़े हैं अपने जा कार्यक्रम में, जे है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से जुड़े गए हमारे श्रोता अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। इनके साथ हमारे जो अगले श्रोता जुड़े हैं उनको नाम पढ़ें। जी, हमारे श्रोता हैं धामण गांव जिला बुलढाणा महाराष्ट्र ते समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी देठे पाटिल, कुमारी सानिका देठे पाटिल और बर्फ गांव नादुरा ते शिवाजी उगले और राहुल उगले। इनके संग हमारे श्रोता संदेश भेजे वारे हैं जी हैं।

ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र ग्राम उस पार से यादराम, वीरेंद्र कुमार, भोली, मनीष, कान्हा, कोमल, लड्डू, वैष्णवी, प्रीति, पिंकी और ओमवती, इनके संग जे संदेशो मिलो अमलतास अम्बरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश के हमारे श्रोतान को, योगेश्वर सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, प्रेम भाई भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललता बाई भारतीय, न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल से पत्र भेजे, संदेश भेजे बारे जी जो संदेश भेजो है जिन्हें डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर गीता शामनानी, दुर्गा भारतीय, अमित भारतीय, ग्राम और पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, अमर सिंह भारतीय, महेंद्र भारतीय, सचिन भारतीय और कोशबाई भारतीय। एक और संदेश ले ले हुए हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर ते जे संदेश मिलो है राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश को, तो आप सबको सुनवावे हैं कमला शर्मा और सखियन के गायब है जा लोकगीत को।

पुरवैया ठंडी हवा चले, अभी आपने जालो गीत को सुनो कमला शर्मा और सखियन के स्वर में। और अब अगले संदेशन को पढ़वे की जो बारी है, वह में सबसे पहलो संदेश मिलो है खुर्जा उत्तर प्रदेश ते तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा को। जे हमारे श्रोता हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब ते, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार, जिनके संग हमारे जे श्रोता जुड़ गए हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ ते दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा के हमारे श्रोता को जो संदेश है शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी व्योमिनी, पुरंजय प्रजापति, कविता, गोविंद, सिमरन और प्रजापति परिवार, आपको संदेशों शामिल भयो जा कार्यक्रम में। और जे हमारे श्रोता हैं रीता राजन अग्रवाल गली रामपाल चौक बाजार मथुरा के हमारे श्रोता, और उमा शर्मा, नितिन, सचिन, राधिका, निधि धौली प्याऊ मथुरा ते हमें संदेश भेज रही हैं। और जे संदेश मिलो रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे और ऋषि शिंदे को, इनके संग जुड़े भए हैं कृष्णा घोट के। आप सबको सुनवावें ब्रजेंद्र तिवारी की गाय भय जा लोकगीत को।

तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में। अभी आपने जालोक गीत को सुनो ब्रजेंद्र तिवारी के स्वर में और पढ़े हैं अपने अगले संदेशन को। तो कार्यक्रम को अगलो संदेश आयो है दतरंगी ते। श्रोता हमारे जुड़े हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा जी। हमारे श्रोता साथी हैं मोताला महाराष्ट्र ते विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, ओम कुमार कुमकुम। और जी हमारे श्रोता हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ ते बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ, शीला भाभी, यशोदा भाभी, भगवान तुलसी ऑपरेटर, चंचल ऑपरेटर और प्रियंका, श्रीमती शीला भाभी, यशोदा भाभी, भाभी उमा देवी, ममता देवी, रामकली, सावित्री, अंश, अंशिका, मोहिनी, गोलू, नीरज, भारती, आरती, काजल, करण और बाबू और इनके संग समस्त रामटोरिया बुंदेलखंड निवासीन को जे संदेशों मिलो। और जे संदेशो है विष्णुपुरी मथुरा के हमारे श्रोता श्याम सुंदर गौतम, गिरधर गोपाल गौतम, कृष्णा गौतम, यामिनी गौतम, माधवी गौतम, दुर्गेश गौतम को जे संदेशो मिलो। और जे संदेशो है डोंगरगढ़ गांव राज नांद गांव छत्तीसगढ़ ते राष्ट्रपाल गजभी, राधिका गजभी, बीबी अनिष्का, तन्मय गजभी और इनके परिवारी जनन को। जे संदेशो मिलो मंडी रामदास मथुरा ते हिमांशी आरना, क्रियांशी पवन और उनको समस्त परिवार। जे हमारे श्रोता जुड़ गए हमारे जे कार्यक्रम ते जरीपुरा हाथरस के जे श्रोता हैं सत्यवीर सिंह, मीरा सिंह, राजेश, आरती, रजनीश, राखी, तुलसी, राहुल, वर्षिता, गर्वित, कनिष्का, गौतम। तो आप सबको सुनवावे हैं सरस कॉल के गायब है जा लोकगीत को।

काली देह पे खिलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। अभी आपने जा लोकगीत को सुनो सरस कॉलर संखियन के स्वर में। अब सुनवावे हमारे अगले श्रोतान की पसंद पे, तो जे फरमाइश हमें भेजी जसवंत नगर जिला इटावा ते गोकर्ण सिंह दिव्या नैतिक संगीत विपिन कुमार प्रीति कुमारी युवान विहान और इनके परिवारी जनन ने। इनके संग ही संग जे हमारे श्रोता हैं नितेश कुमार देवांगन प्रसाद दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर और तनुजा देवांगन ईशांत देवांगन हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं हम संग ग्वालियर नगर बिरला नगर ग्वालियर ते प्रदीप भैया और इनके परिवारी जन जी हैं हमारे श्रोता रोशनलाल देवांगन कौशल देवांगन हेमलता डिम्पल देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ते जे संदेश मिलो और देवशंकर तामुरिया अजय देव तामुरिया तुषार देव तामुरिया डॉली बेबी पूजा तामुरिया राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और इनको छोटा सा पोता मास्टर अल कबीर को जिस संदेश आए गए है हमारे अपने जा कार्यक्रम में और अब आपको सुनवावें और जिस संदेश भी शामिल कर ले जे हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ ते हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा को जे संदेश मिलो और जे संदेशा सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विन शाह मंगलाबेन शाह राजेंद्र जी शाह को है पद्मा टॉकीज पे नेपानगर मध्य प्रदेश ते गांधी ग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जौहरी को संदेश मिलो और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश ते जे संदेश आयो है मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह को और अब आपको सुनवावे हैं आप सबकी पसंद पे बीना शर्मा और सखियन के स्वर में जा लोकगीत को आओ सुने सब मिलकर के।

हमारे जहाँ कार्यक्रम में हमारे संग जुड़े जो श्रोता उनको नाम ले देवे और जे हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश वर्मा, पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ ते, और जे श्रोता हमारे राजू लवानिया, पंकज कुमार, अर्पण जी, खीमेश जी, पंचम लाल चतुर्वेदी, खंदौली आगरा ते, और हमारे जे श्रोता हते निवासा खुपटी महाराष्ट्र ते, बंडू लोहार, पोपलघट, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, और अब बीना शर्मा और सखियन के गाय भई जाई लोकगीत के संग अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम देवे हैं। स्वीकार करो आप हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।

0: विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं।

0: थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित

0: 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में

0: अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूजोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

में। आइए सुनते हैं विधाता फिल्म का ये अगला गीत, सुरेश वाडेकर, अनवर और साथियों की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन बनाई है कल्याण जी, आनंद जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल की युगल सुरों में आपने सुना ईमानदार फिल्म का ये गीत। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

ये आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की और उनके साथ हैं किशोर कुमार। लीजिए सुनिए फिल्म कर्मा का ये गीत। आनंद बख्शी की रचना को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मनहर उदास अनुराधा पौडवाल की गए हुए रामलखन फिल्म के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: प्रातः के 9 बजे है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राजेश शर्मा के स्वर में कुछ गीत।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं राजेश शर्मा के स्वर में कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: राजेश शर्मा की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अभी ही पर समाप्त होता है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में मॉनसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों को बेसब्री से मॉनसून का इंतजार है, लेकिन मॉनसून अपने अनुमानित आगमन से थोड़ा पीछे चल रहा है। क्या है मॉनसून के पिछड़ने के कारण और कब से प्रदेश में शुरू होगा बारिश का दौर, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह।
0: अतुल जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
0: सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर भारत इस वक्त तेज गर्मी से जूझ रहा है, बहुत ही ज्यादा तापमान और लू देखने को मिल रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे में सभी को इंतजार था, ये उम्मीद थी कि मॉनसून के आने का समय हो गया है और थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, कहीं कोई ज्यादा बारिश या इस तरह का तापमान में कोई कमी। तो ये जो मॉनसून है, अभी इसकी क्या स्थिति है और क्या लगता है आपको कि कितने दिनों में ये उत्तर प्रदेश में आ सकता है?
3: देखिए, वर्तमान स्थिति जो है इस समय उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ है उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती प्रसंचरण के रूप में, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसमी तंत्र नहीं है। यदि छिटपुट बारिश कुछ एक जगहों पर हो रही है, परंतु कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही है, जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ

0: जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं। और जहां तक मानसून की बात है, जो वर्षा है वो 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर जो है वो मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसी समय जो है मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। तो अभी मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जून के आखिरी दिनों में जो है वो प्रदेश में मानसून आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। वो 28 जून के बाद किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।
1: सर, मानसून में देरी की वजह क्या मानते हैं आप लोग? जो आप लोगों ने अभी तक रीड करा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्थितियां नहीं बन पा रही थी, इसका कारण क्या है?
0: देखिए, मानसून की जो परिस्थिति है वो कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रीय कारक होते हैं और कुछ सेमी परमानेंट फीचर होते हैं। तो जो सेमी परमानेंट फीचर थे वो सारे के सारे जो हैं इस समय अनुकूल नहीं थे। चाहे वो जो भी हो, मैस्करन हाई दक्षिणी हिंद महासागर में होता है, वो फेवरेबल पोजीशन में नहीं था। इसके अतिरिक्त हीट लोक जो पाकिस्तान के जैकोबाबाद के आसपास बनता है, उसका भी पोटेंशियल कम था, मतलब वो कमजोर था, जिसके कारण की जो मौसमी द्रोणी है वो भी बहुत ही कमजोर थी। इसके अतिरिक्त वेस्ट कोस्ट पर एक ऑफशोर ट्रफ बनती है और वहां पे भी जो है दाब प्रवणता न होने के कारण वो भी अभी तक प्रदर्शित नहीं हो रही थी। तिब्बतन एंटी साइक्लोन या तिब्बतियन चक्रवात वो भी अपनी सामान्य स्थिति से खिसका हुआ था। तो ये सारी ही परिस्थितियां थी जिसके कारण की जो मानसून का फ्लो था वो 10 दिनों के आसपास तक स्टेग्नेंट रहा। लेकिन अभी फिर से एक सिस्टम बना बंगाल की खाड़ी में और उसकी वजह से ये पिछले 48 घंटों के दौरान दोनों ही शाखाएं आगे बढ़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की। और आने वाले दिनों में एक और सिस्टम बनने की संभावना है जिसके कारण कि इसके फिर से आगे बढ़ने और उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना बन रही है।
1: अतुल जी, एक ये इस तरह की भी खबर है कि इस बार कम वर्षा होगी हर बार की तुलना में, और इस तरह के संकेत लगातार प्राप्त हो रहे हैं, और इसको लेकर सरकार तैयारी भी कर रही है कि कहीं सूखा पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो क्या इस तरह की कोई बात है कि क्या इस बार नॉर्मल से कम बारिश होगी?
0: जी बिल्कुल। देखिए, जो दीर्घावधि पूर्वानुमान है मानसून के लिए दो चरण में जारी किए जाते हैं। प्रथम चरण में जो दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि इस साल कुल समेकित वर्षा, अखिल भारतीय समेकित वर्षा सामान्य की तुलना में 92% होने की संभावना है। और उसको फिर मई के आखिर में 29 मई को फिर से अपडेट किया गया और ये आंकड़ा जो है 92 से 90% पर आ गया। लेकिन ये अखिल भारतीय वर्षा है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो ज्यादातर मॉडल्स जो है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर या ज्यादातर स्थानों पर मानसूनी वर्षा जो जून से सितंबर के दौरान होती है वो सामान्य की तुलना में कम रहेगी। और इसके लिए पहले ही संबंधित विभागों और स्टेक होल्डर्स को सूचित किया जा चुका है जिससे कि वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटजी इस हिसाब से निर्धारित कर सकें और उसके अनुसार योजनाओं पर अमल किया जा सके। तो कुल मिला के इस साल जो है वो बारिश सामान्य की तुलना में कम होने की संभावना है। हर साल की तुलना में कम ऐसा हम नहीं कह सकते, पहले भी सामान्य से कम बारिश हुई है कई बार
1: जी
0: तो। लेकिन ये है कि जो दीर्घावधि औसत है उसकी तुलना में कम होने की संभावना।
1: सर, अलिनो का भी क्या इसमें कोई योगदान है?
0: एलिनो का भी योगदान है। एलिनो एक्चुअली एक रिमोट फोर्सिंग है और एक मेजर ड्राइवर है इंडियन समर मानसून का। और एलिनो का जब भी वार्म फेज होता है, वार्म फेज का मतलब जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में एलिनो 3.4 रीजन में जो है वो समुद्री सतह का तापमान जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम वार्म फेज ऑफ इनसो या एलिनो बोलते हैं। और इसका सीधा तौर पर प्रभाव प्रशांत महासागर का नहीं होता है, लेकिन ये दो तरीके से प्रभावित करता है। पहला, इसका जो एलिनो सदर्न ऑसिलेशन का जो एटमॉस्फेरिक ब्रांच होती है सदर्न ऑसिलेशन, उसके थ्रू भारत के ऊपर एक एनोमलस एंटीसाइक्लोन बनता है और जिसके कारण की जो कन्वेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं वो उसको सप्रेस करता है और यहाँ पे गर्म हवाओं का दोगमन कराता है, मौसम जो है वो बिगड़ने से रोकता है। और दूसरी चीज जो होती है वो ये जो है मानसून फ्लो को कमजोर करता है। तो उस मानसूनी हवाओं के कमजोर पड़ने से भी जो वर्षा की तीव्रता और उसका कुल परिमाण है उस पर प्रतिकूल तौर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एलिनो सिर्फ अकेला एक ड्राइवर नहीं है, कई और फैक्टर होते हैं एलिनो के साथ जो कि इसको प्रभावित करते हैं, ये भी एक कारण है के कारण कि सामान्य से कम वर्षा होने की प्रायिकता जो है वो सर्वाधिक प्रायिकता व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ एक क्षेत्रीय कारक भी होते हैं जो कि समय समय पर इन चीजों को निर्धारित करते हैं और उसके आधार पर आगे का हम निर्णय लेते हैं।
1: सर, अगर हीट वेव पैटर्न की बात करें तो हमने देखा कि लगातार यूपी के कई ऐसे जिले हैं जो देश के सबसे गर्म जिलों में शामिल रहे, तो क्या ये गर्मी और हीट वेव पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है या एक सामान्य तौर पर चल रहा है अभी?
0: तराई इलाकों को छोड़ दें तो बाकी सारी जगहों पर फ्रीक्वेंसी है और अवधि उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ी है, लेकिन जो प्रदेश के दक्षिणी जिले सर्वाधिक गर्म रहे इसके पीछे एक भौगोलिक और वैज्ञानिक कारण भी है। वो ये है कि इस समय मतलब समर सॉल्स्टिस होती है 21-22 जून में, उस समय सूर्य जो है वो सीधा कर्क रेखा के ऊपर होता है और कर्क रेखा जो है वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के पास से होकर गुजरती है, तो मतलब सूरज जो है वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के सीधा ऊपर होता है। इस वजह से सर्वाधिक गर्मी इस समय वहां पर वो देता है। और इसके अतिरिक्त वहां का जो भूभौतिकी स्थिति है उसके कारण भी वहां पर हीट जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और उसका हीटिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो ये कई सारे कारक हैं जो कि उसको वैज्ञानिक तौर पर परिभाषित करते हैं कि प्रदेश के दक्षिणी भागों में तापमान जो है वो बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा हो।
1: पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले बढ़ी है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप लोग?
0: देखिए, जिस भी चीज की फ्रिक्वेंसी बढ़ना या घटना ये तो एक सतत प्रक्रिया है, मतलब जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, है और ये अभी बढ़ी या घटी है ऐसा नहीं है। जैसे हमने बताया तराई इलाकों में घटी है, तो कुल मिला के जो जलवायु परिवर्तन ये एक्सेलरेट हो गया है और इस कारण जो उसके प्रभाव पहले काफी दिनों के बाद या एक जनरेशन के बाद दिखाई देते थे, अब वो जल्दी सेम जनरेशन में उसी पीढ़ी में दिखाई देने लगे हैं और वो लोगों को महसूस भी हो रहा है।
1: जिस तरह आप कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन है उसके कारण ये सारी चीजें एक्सिलरेट हो गई हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि जो सीजन है हम उसमें एक्सट्रीम वर्षा देखते हैं या एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, या फिर सर्दियों का मौसम बीत जाता है सर्दी नहीं पड़ती, या एक न्यू नॉर्मल के तौर पर आगे बना
0: जी
1: रहेगा?
0: जी बिल्कुल। देखिए, इस समय की जो वर्तमान स्थिति है 21वीं सदी में अगर हम देखें तो ज्यादातर समय ये स्थितियां रही हैं कि जब भी तापमान जो है, चाहे वो वर्षा हो चाहे तापमान हो, जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं वो बढ़ गई हैं और जो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज होती थी वो घट गई हैं। तो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है वो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स जो है उसमें अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी देखी गई है और ये एक न्यू नॉर्मल है।
1: अतुल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामूहिक चर्चा में आज आपने सुना उत्तर प्रदेश में मॉनसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, और अब आइए सुनते हैं
4: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। क्या है जलवायु परिवर्तन, इस विषय पर लीजिए सुनिए श्रीमती नीलमा शर्मा का आलेख और वाचन।
5: किसी स्थान की औसत मौसमी दशाएं जलवायु कहलाती हैं। ये मौसमी दशाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे प्रकाश, ताप, दाब, वर्षा एवं आर्द्रता आदि। इन मौसमी दशाओं में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु में परिवर्तन पर्यावरण के तापमान, हवा के विन्यास व दाब में समय के साथ प्रभावी बदलाव से है। इसमें से कुछ बदलाव चक्रीय रूप में आते हैं, जैसे दशकों में, शताब्दियों में तथा हजारों वर्षों में, लेकिन कुछ परिवर्तन अनायास ही होते हैं। इनके परिणाम स्वरूप बारिश, ओले या बर्फ का गिरना, कड़कड़ाती बिजलियों के तूफान, चक्रवात तथा समुद्री तूफान आदि होते हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से संतुलित जलवायु में कई परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे कई दुष्परिणाम परिलक्षित होते हैं। तीव्र औद्योगिकरण, वनों का ह्रास एवं बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तित हो रही है। ध्रुवीय बर्फ पिघलने लगी है। जलवायु परिवर्तन से सभी पर्यावरणीय घटकों के साथ समुद्री बर्फ, झील, नदियां आदि प्रभावित होते हैं। इन पर्यावरणीय घटकों के परिवर्तन से पृथ्वी के जीव जंतु एवं वनस्पति भी प्रभावित होते हैं।

जिस गति से मानव अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हेतु प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है और उसका दोहन कर रहा है, उसी गति से प्रकृति में अनेक ऐसे परिवर्तन होते जा रहे हैं जिसके दुष्परिणाम मनुष्य को भुगतने पड़ रहे हैं। विश्व में बिगड़ते हुए पर्यावरण संतुलन एवं प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में जो निरंतर वृद्धि हो रही है वह ग्लोबल वार्मिंग है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने के कारण पृथ्वी के नीचे की सतह पर एकत्रित हो जाती है। इसकी मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली किरणें एवं पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाला ताप वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाता है। इस कारण विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है जिससे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। वैसे भी पृथ्वी के तापमान में पहले से ही इतनी वृद्धि हो चुकी है कि यदि विकास एवं औद्योगिकीकरण की गति इसी दर से बढ़ती रही तो शताब्दी के अंत तक तापमान में 1.5 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार ताप बढ़ने से वायु गर्म हो जाएगी जिससे ऋतु चक्र में परिवर्तन होगा, जिससे कहीं वर्षा कम, कहीं अधिक, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ एवं चक्रवात की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से कृषि पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ जाने के कारण फसल चक्र प्रभावित होगा, पादप रोग एवं हानिकारक कीटों की संख्या बढ़ जाएगी जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर तो बढ़ेगी जिससे पादपों की वृद्धि दर तीव्र होगी, किंतु तापमान बढ़ जाने से इस क्रिया का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। जलवायु में परिवर्तन जो कि मुख्य रूप में यदि देखें तो जनसंख्या में वृद्धि की वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ऐसे ही लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। सभी को भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं, जिसके लिए वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके पदार्थों का अंधाधुन उपयोग कर उन्हें खत्म करने के कगार पर ला दिया है। इतना सारा उपयोग इन चीजों का होने से प्रदूषण बढ़ रहा है जिसकी वजह से तापमान में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है और हमारी जलवायु निरंतर परिवर्तित होती जा रही है। पृथ्वी पर वनों की जो निरंतर कटाई हो रही है उसकी वजह से पेड़ समाप्त होते जा रहे हैं। पेड़ों की कमी से वायुमंडल में प्रदूषित गैसों की मात्रा बढ़ जाने से पृथ्वी की ऊष्मा बाहर उत्सर्जित नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। तापमान में वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तित होती जा रही है, इससे ओजोन परत को भी क्षति पहुँच रही है। इसलिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित व सही रूप में बनाए रखने के लिए मुख्यतः प्रदूषण व जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे ताप में अधिक वृद्धि न हो और जलवायु में परिवर्तन कम से कम हो, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण तथा वनों का विस्तारीकरण ही सभी पर्यावरणीय समस्याओं का उपाय है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, क्या है जलवायु परिवर्तन। आलेख और वाचन श्रीमती नीलिमा शर्मा का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है बच्चों का प्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को लेकर आई हैं पूनम यादव।

0: एकदम हंसते हंसते। वैसे भी आपके स्कूलों की तो छुट्टियां चल रही हैं, तो आप सब तो खूब खुश हो रहे होंगे। लेकिन बच्चों, एक खुशखबरी और है, और वो है कि 2 दिन बाद आपके स्कूल खुलने वाले हैं, और फिर से सब नया, जैसे नई किताबें, नई टीचर, नए नए दोस्त, और किसी किसी के तो नए नए स्कूल। लेकिन बच्चों, आपकी छुट्टियां हो या हो स्कूल चालू, सर्दी हो या हो बरसात, हम अपना ये कार्यक्रम जिसका नाम है बाल गोपाल आपके लिए लाना नहीं भूलते, और जिसको लेकर आई हैं आपकी अपनी पूनम दीदी। बच्चों, आज हम आपसे अपनी पहली चर्चा खुशहाल बचपन और मानसिक स्वास्थ्य इस विषय पर करेंगे। बच्चों का बचपन खुशहाल और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव या बोझ नहीं होना चाहिए। बच्चों के जीवन में शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियां होती हैं, जैसे डिजिटल दुविधा। आज के बच्चे डिजिटल युग में बड़े हो रहे हैं, स्क्रीन और कनेक्टिविटी से घिरे हुए हैं, जिससे तनाव, चिंता और सामाजिक दबाव में वृद्धि होती है। अस्वास्थ्यकर खाने की आदतें एक आम चिंता बन जाती है। बच्चों के बचपन में संतुलित आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आजकल बच्चों को कई तरह के सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है, जो उनके भावनात्मक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जैसे गतिहीन जीवन शैली और बाहरी खेलकूद की कमी के कारण मोटापा, हृदय संबंधी समस्याएं और कमजोर मांसपेशियां जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और पोषण संबंधी आदतें और बचपन में मोटापा, ज्यादा चिकनाई वाला भोजन, बाहर का भोजन, चीनी और अधिक वसा की मात्रा वाला भोजन, खाद्य पदार्थों से बच्चों में बचपन से ही मोटापे की शिकायत हो जाती है। छोटे बच्चों में समय समय पर टीकाकरण की जानकारी रखनी चाहिए कि कौन सा टीका कितनी उम्र पर लगेगा, उसका ध्यान रखना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। टीकाकरण बच्चों में कई तरह की बीमारियों से बचाता है। बच्चों के लिए कुछ सामान्य और आवश्यक टीकों की जानकारी आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में देंगे। बच्चों, एक टीका होता है DDAP। इस टीके को लगवाने से श्वास संबंधी बीमारी, शरीर में ऐठन, काली खांसी जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। बच्चों, टीके तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बीमारियां भी बहुत सारी हैं। हेपेटाइटिस ए और बी, रुबेला, बेरिसेला, IVP, रोटावायरस, PTC आदि, इन सभी टीकों की जानकारी हमें अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों से मिल जाती है। वैसे जो सरकारी आशाएं होती हैं, वो भी घर घर जाकर हमें इनकी जानकारी दे देती हैं। बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा दें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें पौष्टिक आहार का अर्थ बताएं। आउटडोर खेलों पर ध्यान केंद्रित करें, स्क्रीन से दूरी बनाएं। बच्चों में स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए शारीरिक गतिविधि आवश्यक है। घर में खुला वातावरण रखें, बच्चों को अपनी बात कहने का मौका दें, उनकी झिझक खुलवाएं ताकि वो अपनी सारी बातें घर में शेयर कर सकें। बच्चों के स्वास्थ्य प्रबंधन की मात्रा में उनके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए भावनात्मक और शारीरिक दोनों पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों, हमें सामूहिक रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, ये चर्चा हो गई आपसे खुशहाल बचपन और मानसिक स्वास्थ्य पर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक वार्ता, खेलों का महत्व। वार्ताकार हैं काजल अग्रवाल।
1: बच्चों, आज हम जानेंगे कि कैसे खेलों के माध्यम से हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और चारित्रिक विकास होता है। यदि बात करें हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के बारे में, तो सबसे पहले बात यही होगी कि सभी के पास समय की बहुत कमी है। फिर हम भी इससे पीछे नहीं है, क्योंकि

शिक्षा का स्तर वर्तमान समय में अत्यधिक भिन्नता का रूप लिए हुए है। जब एक घर में छोटे से शिशु का जन्म होता है तो सभी उस नवजात शिशु के साथ स्वयं भी बच्चा बन जाते हैं, उसके साथ खूब खेलते हैं और सारा समय उसी बाल स्वरूप में बिता देते हैं। अब खेल जब सभी के लिए इतने आवश्यक हैं, तो बच्चों के लिए तो अति महत्वपूर्ण हुई ना। तो सबसे पहले बच्चों हमें यह जानना होगा कि खेल क्या है, कितने प्रकार के हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चों खेल का संबंध सबसे पहले मनोरंजन या इसके पीछे छिपे आम तथ्य को उजागर करता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह हमारा सर्वांगीण विकास करने के साथ ही कई प्रकार के विकारों से बचाते हैं और उसके साथ ही हमारे अंदर आत्मविश्वास भरते हैं। बच्चों अब बात करते हैं हमारे जीवन में खेल का महत्व क्या है। खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे शरीर के रक्त परिसंचरण में सहायक है। खेल ही हमारे शरीर को तंदुरुस्त, स्वस्थ, गतिशील एवं स्फूर्ति प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों खेलों के प्रकार। समय बदलने के साथ ही प्रत्येक वस्तु कला में परिवर्तन हुआ। वैसे तो खेल कई तरह के होते हैं, पर अब खेलों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला इंडोर, जो घर के अंदर खेले जाते हैं। दूसरा आउटडोर, जो घर के बाहर खेले जाते हैं। खेलों के दो वर्ग होने के साथ साथ उनसे होने वाले लाभ व हानि भी भिन्न हैं। अब बात करते हैं इंडोर गेम्स के बारे में। इंडोर गेम्स अर्थात घर के अंदर हम बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों की बात करें तो इनका सीधा मतलब हमारे मानसिक विकास से होता है। इन खेलों में कभी कभी पूरा परिवार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और घर का वातावरण भी बहुत मनोरंजक एवं उत्साहवर्धक हो जाता है। समय मानो जैसे पंख लगाकर उड़ जाता है और मीठी मीठी बातें यादें छोड़ जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख इंडोर गेम्स के नाम आपको बताने जा रहे हैं। शतरंज, लूडो, कैरम, ताश खेलना, टेबल टेनिस, मार्बल्स, लट्टू, फिरकनी। यहाँ अब हम बताएंगे इंडोर गेम्स की विशेषताएं। बच्चों मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है इंडोर गेम्स पर। इनमें कम जगह से बड़ा मनोरंजन हो जाता है, चोट लगने की संभावना कम होती है। यह खेल पूर्णतया सुरक्षित होते हैं। घर में होने के कारण बच्चे कभी भी इनके साथ खेलते हैं। खेलों के साथ खेलने से बच्चों के दिमाग में नई नई सोच आती है, वह कुछ नया करने का सोचते हैं। इंडोर गेम्स में कम श्रम की आवश्यकता होती है, खेल के साथ साथ मनोरंजन होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, सकारात्मक सोच, प्यारी सी मुस्कुराहट, ईमानदारी एवं अति महत्वपूर्ण उम्मीद हमारे देश का उज्जवल भविष्य। साधारणतया जहां लाभ होता है वहां कुछ हानि तो होती ही है। इंडोर गेम्स से होने वाली कुछ हानियां इस प्रकार हैं। मौसम के अनुकूल चलना मतलब सेहत पर ध्यान देना। इंडोर गेम्स खेलने वाले बच्चे मौसम का परिवर्तन आसानी से सहन नहीं कर पाते। इंडोर गेम्स में मानसिक विकास तो होता है परंतु शारीरिक विकास उतना नहीं हो पाता। शारीरिक श्रम ना होने के कारण बच्चों को इतनी भूख नहीं लग पाती है जितनी लगनी चाहिए। कहने का मतलब बच्चों की भूख में वृद्धि नहीं हो पाती है। बच्चों अभी हमने जाना इंडोर गेम्स के बारे में, अब चलते हैं अपने दूसरे वर्ग की ओर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे खेल एवं विकास का। आउटडोर गेम्स घर के बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। इनका सीधा संबंध हमारे शारीरिक विकास से होता है। इन खेलों के माध्यम से बाहरी मित्रता में खूब बढ़ोतरी होती है। यहाँ हम कुछ प्रमुख आउटडोर गेम्स के नाम आपको बताने जा रहे हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, बेसबॉल, कुश्ती, खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स। आउटडोर गेम्स की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। अधिक जगह की आवश्यकता होती है। शहरों में बड़े बड़े पार्क एवं स्टेडियम होने के कारण ऑक्सीजन, प्राणवायु अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती है और साथ ही बच्चे प्रकृति से जुड़े रहते हैं। अधिक जगह होने के कारण खिलाड़ी गतिशील रहता है जिससे वह तंदुरुस्त होता है। अच्छा व्यायाम होने के साथ साथ मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। बाहरी खेलों से हमारी लंबाई एवं हमारा दिमागी विकास बखूबी होता है। बाहरी

0: में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पसीना खूब निकलता है। पसीना निकलने के कारण शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल आते हैं। बाहरी खेल एक बेहतरीन सामाजिकरण के लिए अति आवश्यक है। बच्चों, अब हम बात करेंगे आउटडोर गेम्स से होने वाली हानियों के बारे में। बाहरी खेलों में चोट लगने की संभावना अधिक होती है। इसमें खिलाड़ी खुले में दौड़ता है और कई बार चोटिल हो जाता है। मौसम से भी अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे बारिश के कारण कई बार प्रतियोगिताएं रद्द हो जाती हैं। बाहरी खेलों में प्रतिभागी को कई बार अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। खेलों को अपने जीवन लक्ष्य के रूप में भी चुना जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर अपने देश का नाम गौरवान्वित किया जाता है। सभी खेल बहुत अच्छे, मनोरंजन भरे, रोमांच से पूर्ण हैं और इनमें आजादी है अपना मन पसंदीदा खेल चुनकर अपना जीवन सफल बनाने की। बच्चों, खेलों का तो यही उद्देश्य है कि हमारा सर्वांगीण विकास हो, जिसमें शारीरिक शिक्षा के साथ खेलों का भी अपना स्थान हो, क्योंकि इसके माध्यम से मन को एकाग्र, भावनाओं को संतुलित, धैर्य का आभूषण धारण करना एवं परोपकारी होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, खेल खेलते समय हमेशा याद रखें कि बेईमानी ना हो। अंत में चलते हुए चंद लाइनें हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, Something is lost, but if character is lost, everything is lost.
1: बच्चों, अभी आपने काजल अग्रवाल से सुनी ये वार्ता, खेलों का महत्व। बच्चों, वार्ता के बाद हमारी दूसरी चर्चा का विषय है बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास। बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना क्यों जरूरी है? जो बच्चे अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जो पढ़ाई को लेकर ज्यादा रुचि दिखाते हैं, जब उन्हें नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, चाहे वे छोटे छोटे काम ही क्यों ना हो, जैसे किसी समूह के काम को संभालना, किसी सहपाठी की मदद करना, तो वे आत्म प्रबंधन और संगठनात्मक कौशल विकसित करना शुरू कर देते हैं। वे चुनौतियों को बाधाओं के बजाय अपनी जिम्मेदारियों के रूप में देखते हैं। नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो बच्चे ध्यान से सुनना, विवादों का ध्यान पूर्वक सुलझाना और अलग अलग दृष्टिकोणों का समझना सीखते हैं, वे भावनात्मक रूप से अधिक जागरूक और सामाजिक रूप से अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। बच्चों, हमारे जीवन में हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आत्मविश्वास हमेशा स्वाभाविक रूप से नहीं आता, बल्कि अनुभव से बढ़ता है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनको किए कार्य करने से किसी को फर्क पड़ता है, तो वे खुद पर विश्वास करने लगते हैं। यही तो पल होते हैं जो भविष्य को आकार देते हैं। हम बच्चों को न केवल स्कूल के लिए बल्कि जीवन के लिए तैयार करते हैं। इस तेजी से जटिल होती दुनिया में नेतृत्व क्षमता युवाओं को चुनौतियों का सामना करने, मतभेदों के बावजूद सहयोग करने, जिम्मेदारी निभाने में मदद करती है। चाहे वे कॉलेज में दाखिला ले हैं या किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हों या अपने समुदायों में योगदान दे रहे हों। बच्चों, नेतृत्व का अर्थ है वादे को पूरा करना। जब बच्चे अपनी जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, चाहे वो होमवर्क पूरा करना हो, घर के कार्यों में मदद करना हो या किसी समूह गतिविधि का आयोजन करना हो, तो वे भरोसेमंद होने का अर्थ समझने लगते हैं। बच्चे सब कुछ देखते हैं। जब वे बड़ों को अपनी गलती स्वीकार करते हुए शांति से किसी समस्या का समाधान करते हुए या किसी जरूरतमंद की मदद करते हुए देखते हैं, तो वह सीखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में असली नेतृत्व कैसा होता है। बच्चों, नेतृत्व क्षमता का विकास तब तेजी से होता है जब बच्चे एक व्यवस्थित वातावरण में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अन्य बच्चों के साथ मिलकर

0: कर सकते हैं। जिम्मेदारी एक मजबूत प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि यह आत्मविश्वास निर्णय लेने और कार्य को पूरा करने में सहायक होती है। तो बच्चों, ये चर्चा हो गई आपसे बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास इस विषय पर। बच्चों, जैसा कि हमने पहली चर्चा में बताया कि आजकल सब कुछ डिजिटल है, इंटरनेट का जमाना है, बच्चे भी कितना भी मना करो सारा दिन फोन में ही घुसे रहते हैं। बच्चों, इसके जितने फायदे होते हैं ना फोन के, उनसे ज्यादा इसके नुकसान हैं। हमें इन सब से जितना दूर रहा जाए उतना रहना चाहिए। अच्छा बच्चों, हम आपको एक वार्ता सुनवाते हैं इंटरनेट के बारे में। वार्ताकार है मनोरमा।
1: अच्छा बच्चों, आप लोग आजकल देखते ही हैं आपके स्कूल्स में सभी में कंप्यूटर सिखाया जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में विश्व में कई प्रकार की सूचना तकनीकी विकसित हो रही है, परंतु इसमें सर्वाधिक असरदार तकनीकी इंटरनेट है। आप सभी को पता है इंटरनेट अलग अलग भागों में या जगहों पर लगे कंप्यूटर्स को जोड़कर सूचना की आवाजाही के लिए बनाई गई एक विशेष प्रणाली है। कंप्यूटर किसी भी सूचना के लिए, चाहे वह शब्दों में हो या ध्वनियों में, फोटो में हो या दृश्यों में, इसे अपनी अंकीय भाषा में परिवर्तित कर उन्हें इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित कर देते हैं। दुनिया में कहीं भी इंटरनेट के जरिए सूचनाएं ली जा सकती हैं और इनका जवाब पाया जा सकता है। हम अपने मैसेजेस भेज सकते हैं और हमारा कोई भी रिलेटिव कहीं भी है तो उनसे सूचनाएं ले भी सकते हैं। तो आप जानते हैं इंटरनेट का इतिहास?
2: किसी को पता है भाई? आप ही बताइए।
1: इंटरनेट की परिकल्पना किस प्रकार हुई और यह कैसे अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा? यह एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है जो कि प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता के मस्तिष्क में उभरता है। इंटरनेट मूलतः सैन्य गतिविधियों का परिणाम था। इंटरनेट की विकास यात्रा को लगभग 30 साल हो गए। इंटरनेट के पितामह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लियोनार्ड क्लिनरॉक को कहा जाता है। इंटरनेट को हम इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे जिस तरीके से यह हाईवे एक सिटी को दूसरे सिटी से जोड़ता है, वैसे ही इंटरनेट भी हजारों कंप्यूटर्स के नेटवर्क को आपस में जोड़ देता है।
2: अच्छा,
1: आप सभी लोग लाइब्रेरी से तो परिचित होंगे ही।
2: भाई, आपके लाइब्रेरी है ना स्कूल में, है ना? होती है, जहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं, है?
1: अब लाइब्रेरी में हम सभी एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान अथवा प्राप्ति कर सकते हैं। हम इसके कुछ मूलभूत कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। लाइब्रेरी में मेंबर्स बनाए जाते हैं जिन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण स्वरूप, कोई मेंबर एक बार में दो या दो से ज्यादा किताबें ले सकता है।
2: हाँ।
1: लेकिन वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ सकता है। कुछ मेंबर्स होते हैं जो बुक्स अपने घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप एक या दो से ज्यादा किताबें नहीं ले जा सकते हैं।
2: हाँ, बिल्कुल
1: ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर बैठे हैं तो वहाँ पर आपको जिस सब्जेक्ट की जो भी बुक चाहिए, बस आपको क्या करना होगा, उस मैटर के बारे में उस इंटरनेट पर एक पता देना होगा, वो पूरी की पूरी किताब आपको वहाँ खुलकर मिल जाएगी, आप उसे पढ़ सकते हैं। एक ही किताब नहीं, आप एक के साथ जितनी चाहें उतने सब्जेक्ट्स पर पूरे टॉपिक्स ले सकते हैं और उसे वहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है?
2: अब आपने जाना ना, देखिए कितनी सही तरह उन्होंने बताया कि जैसे हम लाइब्रेरी में किताब लेंगे, उसको इशू करवाएंगे और तब हम पढ़ सकते हैं, या तो हम वहीं पढ़ें या घर ले जाके। लेकिन इंटरनेट में क्या कि उसमें हमको क्या करना पड़ता है मनोरमा जी?
1: हम वहां पर एक एड्रेस देंगे, वो हमें किताब मिल जाएगी, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी जिसे कि हम वहां बैठकर पढ़ सकते हैं, ठीक है? इंटरनेट को हम एक ह्यूज ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मैटर्स फ्रॉम बुक्स, एजुकेशन, मूवीज, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का नाम दे सकते हैं। जस्ट लाइक एक बड़ा विशाल समुद्र इंफॉर्मेशन का, यानी जानकारी का, जहां हम स्पोर्ट्स हो, ठीक है, या फिर आर्ट्स हो, कल्चर हो, अपने बारे में
2: है, खेल हो, संस्कृति हो, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है खेल के विषय में, और भी किसी भी विषय में हम उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। इससे इन्होंने उसको समुद्र कहा।
1: जी, एक विशाल समुद्र जानकारी का, ठीक है। जिस तरह से विद्युत के आविष्कार ने हमारे जीवन के हर पहलुओं को बदल कर रख दिया है, उसी तरह से आज इंटरनेट भी हमारे जीवन के हर पहलुओं को बदल रहा है। जैसे टेलीफोन के आविष्कार ने हमारी

0: जानकारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में क्रांति ला दी, उसी तरह इंटरनेट आज हमारे बैंकिंग से लेकर शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बिजनेस का भी माध्यम बन चुका है। यानी हम अपना बिजनेस इंटरनेट पर ही कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट के द्वारा हम अपने कैश को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने बिजनेस का प्रसार कर सकते हैं, विश्व भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या किसी एक शहर में बैठकर उसके चैटिंग एप्लेट में, यानी कि एक इंटरनेट पर एक चैटिंग बॉक्स होता है जिसमें हम किसी दूसरे शहर में बैठे हुए अपने किसी भी मित्र या परिवार के संबंधी से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर कार्य करते समय यूं तो हम वेबसाइट, ईमेल, www.com या .org जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं।
1: बच्चों आपने सुना होगा ना www, सुनते होंगे और आप भी सोचते होंगे भाई गर्दन तो हिल रही है, हाँ भी तो करिए, रेडियो में तो आपकी हाँ और ना ये सुनाई देती है। तो जैसे उन्होंने कहा मनोरमा जी ने कि आपने भी सुना होगा www.com, सुना है नाम, है ना, तो ये इसी में हमारे काम आता है।
0: जिस तरह से एक पर्टिकुलर चैनल अलग अलग तरीके कार्यक्रम दिखाता है, उसी तरह से इंटरनेट पर अलग अलग विषय वस्तु की वेबसाइट प्राप्त होती है, जैसे www.yahoo.com, www.shifi.com, ये एक तरह का पता होता है। जैसे कि अगर हमें इस पते को मालूम होना चाहिए, अगर हम किसी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उनका पता मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग अपने दूसरे शहर में रहने वाले किसी फ्रेंड को या किसी को भी लेटर भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, तो हमें उसका सही पता मालूम होना चाहिए। अगर हम सही पता नहीं लिखेंगे तो वह पत्र अपने स्थान तक नहीं पहुंचेगा। वैसे ही अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस वेबसाइट का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हर व्यक्ति के पते में उसका घर का नाम, गली नंबर, मकान नंबर, शहर का नाम इत्यादि सम्मिलित होता है, उसी तरह से बैव के पते में www जो कि कॉमन होता है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड बैव, फिर साइट का नाम, उसके बाद उसका गुण अर्थात .com, .org मीन्स कमर्शियल और ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि लिखा जाता है। ये इंटरनेट सुविधा ISP द्वारा प्रदान की जाती है। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि एक ऐसी संस्था जो कि इंटरनेट सेवा प्रदान करती हो। अभी तक BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाती रही है, परंतु अब रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनीज अपने मोबाइल द्वारा इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा रही है, जिन्हें उपभोक्ता अपनी उपयोगिता और सहूलियत के मद्देनजर बड़ा पसंद कर रहे हैं। बहुत जल्द अब वो युग आने वाला है जब हम इंटरनेट के माध्यम से अपने घर के दरवाजे, टीवी, ओवन, एसी जैसे छोटे छोटे उपकरण एवं कार्य संपन्न कर सकेंगे। इंटरनेट वो शक्तिशाली प्रणाली है जो सूचना तकनीकी का एक बेजोड़ नमूना है, क्योंकि इस 21वीं सदी में सूचना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस देश या व्यक्ति विशेष के पास संबंधित जानकारियों का अभाव होगा, वही व्यक्ति प्रगति की इस दौड़ में सबसे पीछे रह जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास सारी जानकारियां हैं, आप इस तरीके से देखो कि आपका सब्जेक्ट का पेपर है और आपको उस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप फिर पेपर कैसे दोगे। वैसे ही है कि अगर हमें संबंधित विषय के या संबंधित वस्तु के विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो हम इंटरनेट ही नहीं, ये जो प्रगति की दौड़ है इसमें पीछे रह जाएंगे। और जिस तरह से जब मानव समाज ने समाज रूपी प्रणाली का विकास किया था, तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह प्रणाली आगे जाकर उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी। उसी तरह इंटरनेट भी अपना इतिहास दोहरा रहा है। आजकल इंटरनेट से ही आप डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग स्कूल करने के बाद इंटरनेट के जरिए ही डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या और भी कोई अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर ही कर सकते हैं। फिनिक्स यूनिवर्सिटी इंटरनेट पर जानी मानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। आप अपने अकाउंट्स, चेक्स इंटरनेट से ही एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं सारा काम, यानी आप इंटरनेट से शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाकर लॉन्च कर देती हैं। अब हमें क्या है, अगर किसी चीज की शॉपिंग करनी है तो क्या करना होगा, हमें उस साइट पे जाना होगा, उस एड्रेस पे जाके जो चीज हमें पसंद है उस चीज को वहां उस एड्रेस पे सिर्फ इंटरनेट पर ही लिख कर दे देना होगा और अपना एड्रेस देना होगा, वो चीज हमारे घर आ जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना होगा, सिर्फ पैसे देने होंगे और कुछ नहीं।

0: एग यूएस की जानी मानी ऑनलाइन बैंक में से एक है। अंततः मैं कहना चाहूंगी, नई तकनीकों का प्रयोग इंसान की फितरतों में से एक होता है, जो कि कहीं हद तक सफलता का कारण है। जो अपनी फितरतों को पहचानता है, वही जीवन की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो आप लोग भी अपने आप को पहचानिए और अपनी जीवन की सारी सफलताओं को प्राप्त कीजिए।
1: बच्चों, अभी आपने सुनी वार्ता इंटरनेट के बारे में। वार्ताकार थी मनोरमा। तो प्यारे बच्चों, इसी वार्ता के साथ कार्यक्रम को देते हैं विराम। लेकिन बच्चों, जाने से पहले आपको क्या करना है? आपको लिखना है हमारा पता। क्योंकि बच्चों, जब तक आप हमारा पता नहीं लिखोगे, तब तक हमें कैसे बताओगे कि हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और हम अपने इस कार्यक्रम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, जल्दी जल्दी पेन कॉपी निकालो और लिखो हमारा पता। हमारा पता है बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा। बच्चों, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल। कार्यक्रम पेश किया पूनम यादव ने।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को हैं। आपको सुनवाते हैं काव्य गोष्ठी। इस काव्य गोष्ठी में प्रतिभाग कर रही हैं पूनम शर्मा, रेणु उपाध्याय, और इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रही हैं कवयित्री शुभम त्यागी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी।
4: मैं कवयित्री डॉक्टर शुभम त्यागी सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूं, और आज इस कवित्री गोष्ठी में हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। मैं स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। हमारे बीच हैं श्रीमती पूनम शर्मा पूर्णिमा जी, जो अलीगढ़ से हमारे साथ हैं। इसी के साथ एक और शख्सियत श्रीमती रेणु उपाध्याय जी, जो मथुरा से हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। उनका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और मैं स्वयं डॉक्टर शुभम त्यागी आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं, और इस गोष्ठी को आरंभ करती हूं। सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करती हूं, प्रणाम करती हूं। मैंने ही कहीं लिखा

0: करूं तो मां को पुनः से प्रणाम करती हूं और इस कवित्री गोष्ठी का शुभारंभ करना चाहती हूं। हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती पूनम शर्मा पूर्णिमा जी, जो अलीगढ़ से हमारे साथ उपस्थित हैं, जो विभिन्न रसों में लिखा करती हैं, पर्यावरण पर लिखती हैं, ग्रामीण परिवेश पर लिखती हैं, माँ पर लिखती हैं, बेटियों पर लिखती हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि उनका आज जो भी मन करे वो अपनी कविता, अपने विचार यहां हम सबके बीच प्रस्तुत करें। बहुत स्वागत पूर्णिमा मैम।
1: धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए मैं एक छोटी सी कविता से शुभारंभ करती हूँ।
0: जी स्वागत।
1: विष की सीढ़ी पर चढ़कर ही अमृत को पाया जाता है।
0: क्या बात।
1: विष की सीढ़ी पर चढ़कर ही अमृत को पाया जाता है। अमृत पाने की आतुरता में मंथन गहराया जाता है। रत्नों के रूपों में कितने नव शब्द प्रकाशित होते हैं। रत्नों के रूपों में कितने नव शब्द प्रकाशित होते हैं। भाव कलश भर भर बांटो सब कुछ दोहराया जाता है।
0: क्या बात है।
1: भाव कलश भर भर बांटो
0: सब कुछ दोहराया जाता है।

0: करता है। उच्च श्रवा ऐरावत जैसा भान है जिनके अंतर में, उच्च श्रवा ऐरावत जैसा भान है जिनके अंतर में, अमर हुए अज्ञानी का भी दंभ सराहा जाता है।
1: वाँ वाँ।
0: अमर हुए अज्ञानी का भी दंभ सराहा जाता है। भागे मैराथन की माफिक,
1: क्या बात,
0: भागे मैराथन की माफिक अमृतव कलश को पाने को, भागे मैराथन की माफिक अमृतव कलश को पाने को, लेकिन विष पीने वालों को महादेव बताया जाता है।
1: वाँ वाँ।
0: लेकिन विष पीने वालों को महादेव बताया जाता है। विष पीकर नहीं विषैला है, विष पीकर नहीं विषैला है, विपदा में नहीं अकेला है।
1: क्या बात,
0: पीढ़ी दर पीढ़ी हश्र यही अस्तित्व हराया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हश्र यही अस्तित्व हराया जाता है। नाभि चक्र शिखर तक पहुँचे अष्ट कमल दल खिलने को,
1: क्या बात,
0: नाभि चक्र शिखर तक पहुँचे अष्ट कमल दल खिलने को, चहुं ओर दिशाओं में फैले वो प्रेम जगाया जाता है। चहुं ओर दिशाओं में फैले वह प्रेम जगाया जाता है। गिर गिर कर उठ चलते रहने पर नाम कमाया जाता है।
1: क्या बात है,
0: विष पीने वाले से ही अमृत पान कराया जाता है।
1: बहुत खूब,
0: विष की सीढ़ी पर चढ़कर ही अमृत को पाया जाता है।
1: बहुत सुंदर,
0: अमृत पाने की आतुरता
1: बहुत सुंदर
0: गहराया जाता है।
1: बहुत ही सुंदर रचना पाठ आदरणीय पूनम शर्मा पूर्णिमा जी का। और इसी क्रम में एक और नाम हमारे साथ हमारे बीच है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल आप सही समझे हैं, श्रीमती रेणु उपाध्याय जी की, महिलाओं पर जिनका बहुत अच्छा लेखन है, क्योंकि वो शिक्षिका भी रही पूर्व में, इस समय समाज सेविका भी हैं। विभिन्न मुद्दों पर, ऐसे मुद्दे जो अक्सर कविता में नहीं पढ़े जाते, ऐसा एक अलग सा मुद्दा लेकर हमारे बीच श्रीमती रेणु उपाध्याय जी मथुरा से उपस्थित हैं। मेरा उनको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वो भी अपनी मन की बात कविताओं के माध्यम से आप तक पहुँचे हैं।
2: चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगी।

और जैसा मेरी परिचय में कहा गया है, तो एक अलग ढंग की चार पंक्तियां। जो उठा ही नहीं वो गिरेगा ही क्या,

0: अभी क्या। और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं अब आमंत्रित करती हूं उनको जो हमें आमंत्रित कर रही थीं। मैं उनको काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करती हूं, डॉक्टर शुभम त्यागी जी।
1: बहुत प्रणाम। और चार पंक्तियां, हम कवियों को या कवित्रियों को तालियों की क्यों आवश्यकता होती है? चार पंक्तियां आप सबके बीच रखती हूं, सुनिएगा।

मन के भाव सजा देंगे। तुम क्या जानो हम अधरों से मन के भाव सजा देंगे। साथ

0: से, कविता की तो बात ही क्या है, दिल का हाल सुना देंगे। कविता की तो बात ही क्या है, दिल का हाल सुना देंगे। और दिल का हाल चार चार पंक्तियों में पहुंचाती हूँ।
1: स्वागत है।
0: कहीं मैंने लिखने का प्रयास किया रेणु जी,

0: राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा। बहुत आभार। और अब हम इस क्रम को फिर से आगे बढ़ाते हैं, या यूं कहें अब हमारा दूसरे चक्र में पुनः से हमारे बीच एक बहुत ही प्यारी सी कवित्री हमारे बीच उपस्थित हैं। जी हाँ, श्रीमती पूनम शर्मा पूर्णिमा जी, जो अलीगढ़ से हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा उनसे पुनः से अनुरोध है कि वो अपनी रचनाएं, बहुत शानदार उनके गीत गजल हुआ करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर वो लिखा करती हैं, तो जो भी उनका आज मन हो वो यहाँ आप सबके बीच रखें। कहीं किसी ने यूं भी लिखा, किसी बड़े कवि ने लिखा कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, और गौर से हमको देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से हमको सुनोगे, या यूं कहें ध्यान से इनको सुनोगे, तो रफ्ता रफ्ता कानों से कलेजे में उतर जाएंगे। बस शर्त इतनी है कि ध्यान से सुनना है, कलेजे में उतरने का काम पूनम मैम स्वयं कर लेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी, पुनः से आपका
1: धन्यवाद देती हूँ
0: जी।

चाट पकौड़ी दूध जलेबी तबीयत देख मचलती थी।

एक बचपन का और एक्टिविटीज का, आप भी टीचर हैं, शिक्षिका हैं और मैं भी शिक्षिका हूँ, तो जो पुरानी एक्टिविटीज होती थी वो मिट्टी से कुछ बनवाया करते थे, टॉयज वगैरह या कुछ भी, उसको मैंने देखिए यहाँ चित्रित करने की कोशिश की है कि चांद

0: कल तक थे हम जीरो जैसे और अब बनेंगे लाख के, और समझो तो हम चंदन जैसे, ना समझो तो राख से। बस चंदन जैसा समझने की देर है और वो चंदन आपको समझा जा रहा है। आप बिल्कुल हिंदी की माथे की बिंदी की तरह से ही यहाँ भी सुशोभित हो रही हैं। मैं बहुत स्वागत पुनः से करती हूँ आपका आदरणीय रेणु जी, और पुनः से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना रचना पाठ कविता जो भी आपका मन हो आप।
1: धीरज का साथ न छोड़ा है, नारी हूँ, नारी मन की बात कर रही हूँ।

विकल करें कितना बाधाएं, विकल करें कितना पर

0: रहूंगी। बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, और मैं पुनः आप लोगों को वहां जोड़ती हूँ जो इतना सुंदर संचालन कर रही हैं और हम सबको बारी बारी से बुला रही हैं कविता सुनाने के लिए, कविता पाठ करने के लिए। तो मैं भी बड़े प्यार से उनको एक बार फिर पुकारती हूँ, श्रीमती डॉक्टर शुभम त्यागी जी, आप आए और अपने काव्य का वाचन करें।
1: कुमसुम

0: प्यार हुआ है ऐसा पहली बार, हाँ ये पहली बार हुआ है ऐसा पहली बार। और मेरा ये मानना है कि प्यार करना गलत नहीं है, बस गलत इरादे से और गलत तरीके से ना किया
1: क्या
0: जाए।
1: बात, बहुत सही।
0: ऐसा पहली बार हुआ है,

भी हम जब प्रेम में होते हैं आदरणीय, तो हम जो है अगर हम कोई फिल्म या सीरियल देख रहे होते हैं तो अपने पति या प्रेमी को नायक और अपने आप को नायिका के रूप में देखने लगते हैं, तभी कहने का प्रयास किया। अगर आपको भी ऐसा लगता हो तो मेरा साथ दीजिएगा, जो लोग सुन रहे हैं और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, सुनिएगा। धारावाहिक और फिल्में भी, धारावाहिक और फिल्में भी मन को रोज लुभाते, हर किरदार में मैं और तुम ही जान क्यों बस जाते, हर किरदार में मैं और तुम ही

माँ जब जब बच्चे छोटी होती है, अमूमन हम भी छोटे रहे तो हम दो चोटियां बनाया करते थे या करते हैं जो बच्चियां हैं अभी, लेकिन वो बच्चियां कब किशोरी में परिवर्तित हो जाती हैं, दो चोटी पे एक चोटी पर आ जाना चाहती है या गुड्डे गुड़ियों की बातों से इतर बातें करने लगती है। वही कहने का प्रयास किया कि चोटी करते करते माँ जब, चोटी करते करते माँ जब कहती रोज कहानी, परियां वरियां गुड्डे बुड्डे कुछ राजा कुछ रानी, परियां वरियां गुड्डे बुड्डे कुछ राजा कुछ रानी, आंखों में बस तेरा चेहरा, आंखों

कहीं यूं भी कहा गया, कई जीत बाकी हैं और कई हार बाकी हैं, और अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। और जनाब ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो हम पुनः से आप सबके बीच उपस्थित होंगे। मैं पुनः से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपनी दोनों कवित्री बहनों का, श्रीमती पूनम शर्मा जी अलीगढ़ से हमारे बीच थी, साथ ही आदरणीय श्रीमती रेणु उपाध्याय जी मथुरा से हमारे बीच थी। मैं डॉक्टर शुभम त्यागी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए। हमारे श्रोताओं को विभिन्न रंगों से आपने भर दिया, उन्हें रंगों से विभोर कर दिया। आप लोगों का भी दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।

0: इस गीत से पूर्व आप सुन रहे थे काव्य गोष्ठी। प्रतिभागी थीं पूनम शर्मा, रेणु उपाध्याय, संचालन किया शुभम त्यागी ने। और ये गीत आपने सुना फिल्म इजाजत से, आवाज थी आशा भोसले की।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता से सीधे संवाद का कार्यक्रम मन की बात। आज शाम 6:30 से आप सुन सकेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर से मैच का आंखों देखा हाल, मैच की समाप्ति तक।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, फिल्म काला सोना से।

मजरू सुल्तानपुरी के शब्दों को संगीतबद्ध किया आरडी बर्मन ने। गीत है आशा भोसले और डैनी की आवाजों में।

काला सोना, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और डेनी की आवाज़ों में। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था आरडी बर्मन का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म समाधि से। इस गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले ने, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत आरडी बर्मन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में तलाश फिल्म का ये गीत आपने सुना। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आइए सुनते हैं परदेसी बाबू फिल्म का ये अगला गीत।

आनंद राज आनंद, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में आपने सुना परदेसी बाबू फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 10:55 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता से सीधे संवाद का कार्यक्रम मन की बात। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत

के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में

एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिस्सा

योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है।

साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के

दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण

इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह

0: जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए।
3: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।
4: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता

0: 05 65 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी, नमस्ते सर।
1: नमस्ते, स्वागत आपका कार्यक्रम में।
2: सर मैं गांव उसपार से ब्रज रेडियो श्रोता मित्र वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर।
1: कैसे हैं वीरेंद्र जी?
2: सर बढ़िया है, आप ठीक है सर?
1: एकदम अच्छे हैं। कैसा काम चल रहा है आपका?
2: अच्छा चल रहा है सर, बिहारी जी की कृपा से। और सर हमारी आकाशवाणी टीम ठीक है सर?
1: बिल्कुल, सभी लोग अच्छे हैं। आपके परिवार में सब कैसे हैं?
2: सब बढ़िया है सर, दो तीन दिन से हम बीमार चल रहे थे, बीपी थोड़ा हाई हो रहा था हमारा।
1: अरे रे, आप कैसा है?
2: आप तो सर आराम में, थोड़ा दवाई चल रही है।
1: चलिए अच्छी बात है, बताइए आज क्या फरमाइश है आपकी?
2: पुली पिक्चर का गाना है सर, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ सर,
0: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: सर केशव बोल रहा हूँ, गांव लोगन से बोल रहा हूँ सर, यमुना पार।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ सर ठीक है, आपकी दुआएं हमारे ऊपर।
0: परिवार में सब ठीक है आपके?
1: हाँ सब कुशल मंगल हैं।
0: और काम अच्छा चल रहा है?
1: हाँ सर काम का बढ़िया चल रहा है।
0: चलिए आज बताइए आपकी क्या फरमाइश है।
1: बाबू फिल्म का गाना सुनना था, ए हवा मेरे संग संग चल,
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: प्यार सा प्रेम, प्यार सा नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: जी हृदय से धन्यवाद मानवर, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रीराधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीक्षित साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप?
1: आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा है, परिवार में सब लोग आनंद से रहते हुए आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप प्रस्तुत करते हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से, बहुत अच्छा लगता है सुनकर, मन प्रफुल्लित और गदगद होता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं और आप उनको मनोयोग से सुनते हैं।
1: जी जी, आपके यहाँ से प्रसारित लोकगीत, फिल्म संगीत और रोचक जो वार्तालाप होती है, साथ में सूचना शिक्षा मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमारी मेहनत सफल हो रही है, हमारा उद्देश्य कामयाब हो रहा है।
1: जी, आप सबका परिश्रम है, मेहनत है, लगन है और जो समर्पित भाव से कार्यक्रम तैयार करते हैं वो वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है।
0: जी प्रजापति जी, आज बताएं क्या सुनेंगे?
1: महोदय, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है संगीत
0: जी,
1: और इसमें बहुत ही सुंदर प्यारा सुरला गीत है। संगीत जहाँ है गीत वहाँ है, गीत जहाँ है प्रीत वहाँ, बहुत ही सुंदर सुरला मधुर गीत है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से प्रसारण हेतु।
0: सुनवाते हैं प्रजापति जी आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: जी नमस्ते,
0: नमस्ते।
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से। जी
0: प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप?
0: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: जी जी, क्या कर रहे हैं आजकल?
1: जी अभी हमारे खेतों में सोयाबीन की फसल लगाने की तैयारी हो रही है।
0: अच्छा, बुवाई होगी अभी?
1: हाँ जी, कल बरसात हुई अच्छी यहाँ पर।
0: अच्छा, यहाँ तो गर्मी पड़ रही है अभी।
1: हाँ गर्मी भी है लेकिन सर बरसात से मतलब है ना, पानी गिरा है ना, तो मतलब फसल लगाने जैसा गिर चुका है यहाँ पर पानी।
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: फसल के लायक पानी बरस चुका है।
1: हाँ जी, अभी सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी और जैसे कि नदियाँ तालाब कुएं भर जाते हैं ना,
0: जी,
1: तो मतलब 2.5 से 3 महीने में सोयाबीन की फसल पक के तैयार हो जाती है।
0: परिवार में सब ठीक हैं?
1: हाँ जी सब अच्छे हैं। और

0: आकाशवाणी के जरिए मुझे एक बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं मथुरा से ही
1: जी
0: जी चौधरी महेंद्र सिंह जी, उनसे मेरी बात हुई, बहुत ही अच्छे हैं वो और मुझे आकाशवाणी मथुरा के द्वारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिले हैं, इसलिए आकाशवाणी मथुरा का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: यानी आकाशवाणी जोड़ने का काम कर रहा है।
0: हाँ जी, काफी श्रोता मित्र जो कॉल लगाते हैं ना कार्यक्रम में
1: जी,
0: और एक दूसरे की बातें सुनने को मिलती है और साथ में हम फिर दोस्त भी बन जाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बताइए आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी।
0: मैं महेंद्र सिंह जी के लिए गाना सुनना चाहूंगा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, थैंक यू सो मच।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: शिक्षित जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: मैं जवाहर सिंह गांव सहायपुर तहसील नदवई जिला भरतपुर राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ। सरकार
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया है, ठीक है, गर्मी है सर।
0: हाँ, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान रखिएगा।
1: खेती का काम चल रहा है।

0: खेतों में क्या चल रहा है?
1: बुवाई ये सब बाजरा।
0: अच्छा,
1: खरीफ की बुवाई हुई।
0: अरे वाह, और सब ठीक ठाक?
1: हाँ सब ठीक ठाक है, हम न करते रहते हैं आपके ठीक रहने की।
0: जी जी, कार्यक्रम सुन रहे हैं लगातार?
1: हाँ सुन रहे हैं सब।
0: अच्छा अच्छा, बताइए आज आपको क्या सुनवाएं?
1: दूर की आवाज फिल्म है
0: जी,
1: हाँ उसका गाना सुनवा दें।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार साहब।
0: नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी कव्वालियों का कार्यक्रम। सुनते हैं इस क्रम में ये पहली कव्वाली AR रहमान की आवाज में फिल्म जोधा अकबर से। रचना जावेद अख्तर की, संगीत निर्देशन AR रहमान का है।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और साथियों को फिल्म वीर जारा में। रचना जावेद अख्तर की, संगीत निर्देशन मदन मोहन का।

श्रोताओं, ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान, जावेद अली और साथियों की आवाजों में फिल्म रॉक स्टार से। इसे लिखा चिंटन सेरोजोनोय, संगीत एआर रहमान का।

0: श्रोताओं, इसी कव्वाली के साथ कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: लीजिए प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रजेंद्र तिवारी के गाए कुछ ब्रज लोकगीत। इस क्रम में सुनते हैं ये पहला लोकगीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी तक आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने ब्रजेंद्र तिवारी के स्वर में कुछ ब्रज लोकगीत।

FM 102 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 1 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. He noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. This time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations across the globe. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India topped the medals tally.
3: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित और इस सभा के शेष कार्यक्रम साथ ही साथ अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

संध्या 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर से आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। साथ ही साथ आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दिन में 1:15 पर हम आपको सुनवाएंगे झलकी बदलती हवा। लेखक होंगी मीना श्रीवास्तव, प्रस्तुति आरके त्रिपाठी की होगी। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ ये फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 1:30 पर। आज की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित और ओपी सिंह की होगी। फिल्म संगीत सुनिएगा अपराहन 1:00।

बजकर 45 मिनट पर सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण होगा अपराह्न 2:30 पर। अपराह्न 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। सांध्यकालीन सभा शुरू करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे डिजिटल तकनीक का एकीकरण और पीवी नरसिंह राव जयंती।

0: संध्या वंदन कार्यक्रम होगा संध्या 6:45 पर। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय संध्या 7:05 रहेगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं उद्धव शतक सौपाठ, शाम सुहानी। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे। कार्यक्रम एक ही फिल्म से का समय रहेगा रात्रि 8:30। सुहाने तराने प्रसारित होंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 11 बजे अंग्रेजी समाचार, 11:10 पर होंगे हिंदी समाचार। और इसी के साथ रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आइए सुनते हैं इस मास का गीत। गीत रचना रवि खंडेलवाल की, संगीत निर्देशन सुरेश गुप्ता का।

0: अभी तक आप सुन रहे थे इस मास का गीत। गीत लिखा रवि खंडेलवाल ने, स्वर जगदीश प्रसाद का था, संगीत निर्देशन सुरेश गुप्ता का।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
5: बदलती हवा, आइए सुनते हैं मीना श्रीवास्तव की लिखी झलकी। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता हैं आर के त्रिपाठी।
6: आ गई बेटी?
7: हाँ माँ। माँ आज तो स्कूल में मजा आ गया, आज सिर्फ परिचय हुआ, पढ़ाई कल से होगी। मेरी एक नई सहेली बनी है सीमा, बहुत अच्छी है, मिलोगी तो खुश हो जाओगी। उसके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उसे जरा भी घमंड नहीं है, उसने मुझसे स्वयं दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
6: अरे अब बस भी कर, जब से आई है बराबर बोलती जा रही है, चल हाथ मुंह धो के खाना खा ले।
7: अच्छा माँ, आप खाना लगाओ, मैं अभी आती हूँ। माँ आज तुम इतने शांत क्यों हो? क्या बात है, मुझसे कुछ छुपा रही हो?
6: मेरी अच्छी माँ प्लीज बताओ ना क्या बात है, नहीं तो मैं समझूंगी मैं तुम्हारी बेटी नहीं। नहीं बेटी, कौन कहता है कि तू मेरी बेटी नहीं? तू तो मेरा जीवन है, मेरे लिए और है ही कौन? तेरे पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ तेरे लिए ही तो जी रही हूं। कहीं तुझे गुस्सा ना आ जाए इसलिए तुझे नहीं बता रही थी। गुस्सा ना हो तो सुन, तेरे गांव से ताऊ जी एक रिश्ता लेकर आए थे, लड़का पायलट है, उसका नाम नीरज है। वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। बेटी मेरा तो बोझ सर से उतर जाए, तू अच्छे घर पहुंच जाए, बस मेरी यही कामना है।
7: नहीं माँ, मुझे तो अभी बहुत पढ़ाई करनी थी, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट तो करने देती।
6: अरे बेटी अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं, ससुराल वाले चाहेंगे तो तुझे खुद ही पढ़ा लेंगे।
8: माँ ने कहा था आज मुझे वो देखने आ रहे हैं, चलो तैयार होती हूँ।
6: अरे तुम तो तैयार हो गई, वाह वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। ले मेरी ये जेवर पहन ले, और हाँ अपने बालों में गजरा लगा ले, देखूं तो अपनी लाड़ो को। वाह तेरे सपनों का राजकुमार तुझे देखते ही खुश हो जाएगा। नौ बजने वाले हैं,

0: अभी कुछ हुआ भी नहीं है। जल्दी से बैठक को ठीक करके नाश्ता तैयार करती हूँ। लगता है वे आ गई। आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए।
1: बहू, ये हैं सेठ रामप्रसाद जी, ये हैं सेठानी धनवती जी, और ये है इनका लाडला बेटा नीरज।
0: नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी।
2: नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
0: आइए आइए। अंजेश बेटी, चाय लेकर आओ।
3: लाई माँ जी। आओ बेटा आओ, मेरी बगल में बैठो।
4: जी
2: बहन जी, हमारा एक ही लड़का है, किसी से कम नहीं है, 25,000 रुपए महीने वेतन पाता है। आपकी लड़की राज्य करेगी हमारे घर में। उसकी स्वयं इच्छा थी कि मैं पायलट बनूं। मैंने इसकी पढ़ाई पर काफी खर्चा किया है, काफी।
3: बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है।
0: अच्छा अच्छा, वो अब आप ही की बेटी है। बेटी जाओ, नीरज को अपने फार्म में घुमा लाओ।
3: जी माँ।
5: आइए चलें।
2: हाँ बहन जी, अब कुछ बात हो जाए, आप शादी में हमें क्या देना चाहेंगी?
0: भाई साहब, मेरे पास तो सिर्फ लड़की है, फिर भी मैं अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगी।
2: अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगी, बात हमारी कुछ समझ में नहीं आती। नहीं नहीं, हम तो ऐसा चाहेंगे कि आप 5,00,000 रुपए हमें नकद दें, नकद। चलो धनवती, चलते हैं यहाँ से।
0: नहीं नहीं सेठ जी, मैं इतना खर्च नहीं कर पाऊंगी। इस तरह भगवान के लिए आप इस तरह नाराज होकर मत जाइए।
3: नहीं नहीं, मत जाइए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटा नीरज, बेटा नीरज।
5: हाँ माँ।
3: चलो यहाँ से, चलो।
5: माँ क्या बात है?
2: बात घर में ही होगी।
0: ऐसा मत,
2: या नहीं, चलो।
3: या नहीं, घर में बताएंगे।
0: ऐसा मत,
6: आओ चलो।
0: हे भगवान, अब मैं क्या करूँ?
7: माँ क्यों दुखी होती हो? जाने तो अच्छा ही हुआ हम बच गए ऐसे दहेज लोभियों से। मैं ऐसे घर की बहू हरगिज नहीं बनूंगी। चुप हो जा माँ।
5: अच्छा, तो आप इस बात पर नाराज हुए? दहेज लेना व देना दोनों कानूनी जुर्म है। आप लोगों ने इतने समझदार होते हुए भी उस असहाय माँ का दिल दुखाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे पास सब कुछ है, मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा।
2: बेटा ये तू क्या कह रहा है? हमने कितना पैसा तेरी पढ़ाई पर खर्च किया है, क्या यही दिन देखने के लिए? तेरे लिए तो एक से एक बढ़कर रिश्ते आएंगे, समझे?
5: पिताजी, बड़े घर के रिश्ते बड़े घरों के लिए आएंगे। हमें ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जो असहाय हैं। फिर अंजेश में क्या कमी है? पढ़ी लिखी है, सुंदर है, मुझे अपने लिए ऐसी ही पत्नी चाहिए। मैं उसी से शादी करूंगा। मैं जा रहा हूँ।
3: अरे बेटे नीरज, कहाँ जा रहे हो?
5: जहाँ मुझे जाना चाहिए।
3: अरे रुक तो, सुन ले जरा।
5: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
7: अरे तुम?
0: अंजेश बेटी, कौन है? अंदर तो बुला ले।
5: माँ मैं हूँ नीरज, मैं अपने माता पिता के व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं घर छोड़कर आ गया हूँ, मैं अंजेश से ही शादी करूँगा।
0: अरे नहीं बेटा, इस तरह नाराज नहीं होते, वो जहाँ चाहें वहीं तुम शादी करो।
5: मुझे अब और शर्मिंदा ना करो, हम कोर्ट में शादी करेंगे, आदर्श विवाह।
2: धनवती, मैं उन दोनों को कभी साथ नहीं रहने दूंगा, वो हमारे परिवार की बहू कभी भी नहीं बन सकती।
3: तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, हमें तो पैसा चाहिए, पैसा।
2: जी हाँ, हमें पैसा चाहिए, पैसा।
3: और सुनो, एक बात बताऊं।
2: जी
3: ध्यान से सुनो।
2: हाँ,
3: अब मेरी बात मानोगे तो पैसा ही पैसा मिलेगा।
2: हाँ बिल्कुल, क्या कहना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी योजना पूरी तरह सही है धनवती, अब देखो मैं तुम्हारे सपने किस तरह साकार करता हूँ।
3: बिल्कुल करना जी।
5: अरे माँ और बाबूजी, आप?
2: हाँ बेटे,
5: आइए आइए,

0: बेटा हमें माफ कर दो, हम दौलत के चक्कर में अंधे हो गए थे, हम दोनों तुम्हें लेने आए हैं।
1: नहीं पिताजी नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, हमें बस यही खुशी है कि आपने अपने आप को पहचाना। अरे अंजेश देखो माँ और बाबूजी आए हैं।
2: प्रणाम पिताजी, प्रणाम माँ।
0: खुश रहो बेटे।
3: बाबू खुश रहो। बेटी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बेटी अब घर चलो, तुम दोनों के बिना घर खाने को दौड़ता है।
0: हाँ बेटे चलो।
1: चलो अंजेश तैयार हो जाओ।
2: जी चलते हैं।
1: चलिए।
0: धनवती अब देख मेरी चाल। बेटा नीरज।
1: जी बाबूजी।
0: देख तेरा बुलावा आया है, ये रहा टेलीग्राम, ले हेडक्वार्टर से तेरा बुलावा आया है।
1: बुलावा? ओ मेरी तैयारी करो अंजेश, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। अरे तुम्हारी आंखों में ये आंसू।
2: नीरज मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी।
1: पगली रोते हैं कोई। अरे जल्दी ही आऊंगा, गुड बाय।
2: अच्छा जाते ही पत्र लिखिएगा।
1: ओके।
3: अरे अब पड़ी पड़ी आंसू बहाती रहेगी या घर का कुछ कामकाज भी करेगी? ये घर का काम कौन करेगा? मैं अपने बेटे के लिए इतनी अच्छी बहू लाती जो साथ में बहुत सारा दहेज भी लेके आती।
2: मां जी आप ही तो मुझे यहाँ लेकर आई हैं। नीरज के जाने के बाद ये सब क्या हो रहा है?
0: जवान भी चलाती है। धनवती ने बिल्कुल ठीक कहा है, जा यहाँ से 5 लाख रुपए लेकर के आ, वरना यहाँ से चली जा। धनवती मार धक्का, बाहर कर दे इसको।
2: नहीं नहीं मुझ पर रहम कीजिए, मेरी माँ इतनी रकम कहाँ से दे पाएगी।
0: रहम?
2: मुझे यहीं रहने दीजिए प्लीज, मुझे मत निकालिए।
0: अब रहम की भीख मांगती है, कैसा रहम?
3: तेरे जैसों पे रहम, जो मेरे बेटे की जिंदगी खराब करके बैठी है। निकल जा यहाँ से, चल अपनी माँ के घर जा यहाँ से।
0: चल चल निकल।
2: नहीं नहीं रहम कीजिए,
0: रहम कीजिए, निकल।
2: नहीं, नहीं।

0: बेटी बेटी तू इस हाल में इस वक्त सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटी?
1: माँ माँ मुझे उन लोगों ने घर से निकाल दिया। वो लोग और दहेज की मांग कर रहे हैं माँ।
0: क्या?
1: 5 लाख रुपए मांग रहे हैं।
0: क्या बेटी बेटी तू मत दुखी हो, मैं तेरे सुख के लिए सब कुछ बेच दूंगी।
1: नहीं,
0: घर बेच दूंगी, फार्म बेच दूंगी, तू चिंता मत कर। मैं दहेज के लिए सब कुछ बेच दूंगी, पर तेरे सास ससुर को दहेज जरूर दूंगी ताकि तुझे सुख मिल सके।
1: नहीं माँ, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। तुझे मेरी सगन, मैं उन दरिंदों की हवस पूरी कभी नहीं होने दूंगी। माँ मैं माफ करूंगी।

0: माँ देखो मुझे इंटर कॉलेज में नौकरी मिल गई है, मैं अंग्रेजी की टीचर बन गई हूँ।
1: हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है बेटी, तू खुश रहे मेरी बस यही दुआ है। मेरा क्या है, मैं तो आज हूँ कल चली जाऊंगी।
0: बस बस चलो माँ दवाई खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो।
2: जी मैडम।
3: मिसेस अंजेस को बुला के लाइए।
0: मैडम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
3: यस। अरे मिसेस अंजेस आओ, देखो हमारी प्रबंध समिति की अध्यक्षा तुमसे बहुत खुश हैं, वो तुमसे मिलने आई हैं।
0: अरे सीमा तुम?
4: हाँ अंजेस मैं, तुम यहाँ कैसे?
0: क्या बताऊँ, मुझे मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लालच में घर से निकाल दिया, इसीलिए लाचार होकर मैं नौकरी कर रही हूँ।
4: अंजेस तू चिंता मत कर, मैं उन दहेज लोभियों को पकड़वाऊंगी, मैं उनको ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे।
3: अंजेस ये है मेरे पति आकाश।
5: नमस्ते जीजा जी।
3: आओ अंजेस एक एक कप चाय हो जाए।
2: अरे भाई चाय पाए बाद में हो जाए, पहले ऐसा करते हैं, पहले हम अंजेस के ससुराल के चलते हैं।

0: अरे अंजेश, तुम, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था कि तुम, तुमने तो...
1: नीरज, ये तुम क्या कह रहे हो?
2: नीरज जी, बंद करिए ये बकवास। अपनी माँ से पूछिए, तुम्हारी जाने के बाद इस बिचारी को कितने जुल्म सहने पड़े। तुम्हारे घर वालों ने 5 लाख दहेज के लिए घर से बाहर निकाल दिया। मैं दहेज उन्मूलन अधिकारी हूँ, मुझे सेठ राम प्रसाद व धनपति को अभी गिरफ्तार करवाना है।
3: बेटा नीरज, ये सब क्या माजरा है?
0: मुझे अपनी गंदी जुबान से बेटा मत कहिए। मुझे धिक्कार है कि आप जैसे लोगों का मैं बेटा हूँ। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला, मेरी सीता जैसी पत्नी पर आरोप लगाया। अंजेश, अंजेश प्लीज मुझे माफ कर दो। अंजेश, मुझे लेटर द्वारा यही बताया गया था। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को।
4: बेटी हमें बचा लो,
5: हमें बचा लो बेटी। बेटी हमें बचा लो। तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। बेटी हमें बचा लो। बेटी
1: जीजाजी छोड़ दीजिए। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहा था। बस यही दुआ है भगवान से कि इन दोनों को सद्बुद्धि दे और दहेज लेने और देने वालों को भी सद्बुद्धि प्रदान करे।
6: बदलती हवा, ये थी मीना श्रीवास्तव की लिखी झलकी। इस झलकी में भाग ले रहे थे सरिता शर्मा, मोहिनी आचार्य, सरोज शर्मा, रेणु मिश्रा, लता शर्मा, स्वराज कुमार, राजेश कुमार, श्री कृष्ण शरद और भगवान सिंह चौहान। इस झलकी को प्रस्तुत किया R.K. त्रिपाठी ने।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित और संजय सारस्वत की है।

0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं देवराज कृष्ण दीक्षित जी।
1: संजय जी, आपको भी नमस्कार और हमारे तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार जो कार्यक्रम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और देखिए, हम आगे बात शुरू करें उससे पहले फोन आना शुरू हो गए हैं, तो लेते हैं ये फोन कॉल।
0: हेलो
2: जी, कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल के साथ
1: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
2: जी दीक्षित जी नमस्कार।
1: नमस्कार, हमारे साथ हैं आज संजय सारस्वत जी।
2: आदरणीय सारस्वत जी नमस्कार।
0: नमस्कार चौधरी साहब, कैसे हैं आप?
2: महोदय हम लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप बताओ हमारी समस्त आकाशवाणी टीम कैसी है? सर
1: बहुत अच्छे हैं। आप कार्यक्रमों के बारे में क्या कहना चाहेंगे ये बताइए।
2: महोदय ये तो आप जानते हैं कि हम आपके नियमित और पुराने श्रोता हैं सर
1: जी।
2: सभी कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आपको प्रतिक्रियाएं भी देते हैं।
1: बिल्कुल,
2: आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले लगभग सभी कार्यक्रम हमें बेहद अच्छे लगते हैं। आपके सभी कार्यक्रमों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है।
1: देखिए, तारीफ की बात तो एक तरफ है, लेकिन अगर कोई सुझाव हो या कोई शिकायत हो तो आप उसे पहले बता सकते हैं, उसका भी स्वागत है।
2: सर एक सुझाव तो है, अगर आप स्वीकार करें तो।
1: जी आप बताइए।
2: प्रत्येक मंगलवार को हेलो किसान वाणी जाता है आपके केंद्र से
1: शाम को 6:15 पर।
2: जी उसका 30 मिनट का समय दिया है आपने, यानी 6:15 से तो वो जाता ही है, लेकिन 6:45 पे वो समाप्त हो जाता है।
1: जी जी,
2: कार्यक्रम संध्या बंदन जो आप लेते हैं
1: जी,
2: उस दिन आप भक्ति जो गीतों का संध्या बंदन कार्यक्रम पेश करते हैं, उस दिन आप उस प्रोग्राम को न करके पूरा 7 बजे तक अगर इस प्रोग्राम को कर दें तो बड़ी कृपा हो।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है, और अगर संभव हुआ तो ये कार्यक्रम का समय बढ़ाया जा सकता है। आपकी बात हमने नोट की हुई है और इस पर विचार करेंगे। आने वाले समय में अगर संभव हुआ तो ये आपका जो सुझाव है ये मान्य होगा।
2: सर मैं ये कटौती हर रोज के लिए

0: नहीं कर रहा हूँ, केवल उसी दिन यानी मंगलवार के, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, हम किसानों के लिए लाभदायक है, इससे हमारे किसानों को बहुत कुछ मिलता है। आप हर विषय में डॉक्टरों से जो बात कराते हैं, चाहे वो कृषि हो या पशुपालन हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और ये कार्यक्रम जो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए ही है, यानी इस कार्यक्रम में हम समय समय पर किसान भाइयों को उपयोगी जानकारी सुनवाते हैं, और साथ में हमारे जो श्रोता हमें सजीव सुन रहे होते हैं, अगर उनकी कोई
2: समस्या
1: समस्या
2: होती
1: होती
2: है।
1: है तो उसका भी समाधान हमारे विशेषज्ञ
2: जी,
1: उसी समय करते हैं।
0: अच्छा सर, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है ना हेलो आकाशवाणी
1: जी,
0: ये इतना लोकप्रिय हो चुका है, बन चुका है, बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, इसके चाहने वाले सुनने वाले बहुत बड़ी तादाद में श्रोता बन चुके हैं, इस कार्यक्रम की तरफ थोड़ा ध्यान दें, बजाय आधा घंटा के इसे एक घंटा कर दें, जैसे ये प्रतिदिन होता है छोड़कर शनिवार के दिन को
1: जी,
0: लेकिन फिर भी अभी श्रोता संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि इसका समय और बढ़ाया जाए।
1: समय बढ़ाने की हमारे काफी श्रोता मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसको सुनते रहिए, इसको ऐसा ही स्नेह देते रहिए, और भविष्य में अगर समय बढ़ाने के लिए बात हुई तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।
0: आपका अमूल्य समय न लेते हुए, वक्त को जाया न करते हुए, बस मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि और श्रोता भी लाइन पर लगे हुए। जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: चौधरी साहब।
0: राधे राधे सर।
2: एक और फोन कॉल आ रही है देवराज जी।
1: जी ले लेते हैं।
2: हेलो।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए।
3: मैं ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, ग्राम डाकघर छटीगरा, थाना जैत
1: जी
3: से बोल रहा हूँ।
2: सिसोदिया जी, स्वागत है कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे
3: बहुत,
2: आज
3: बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। हम ये कहना चाहेंगे सर, कार्यक्रम तो सभी आपके बढ़िया चल रहे हैं, पर एक अनुरोध हम ये करना चाहेंगे कि ट्रांसमीटर में कभी कभी जो है गड़बड़ी आ जाती है, आवाज सुनने थोड़ा साफ नहीं आती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहते हैं।
2: आप मोबाइल ऐप पर भी सुनते हैं क्या?
3: ये मोबाइल ऐप पर भी सुन लेता हूँ, पर मैं नेत्रहीन हूँ ना, इसलिए मोबाइल ऐप पर चलाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
3: मैं जो नेत्रहीन आदमी।
2: आपकी समस्या हम अपने उच्च अधिकारियों तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
3: सर आज आप अकेले मालूम पड़ रहे हो।
2: देवराज जी हमारे साथ हैं आज।
3: अरे देवराज जी तो फिर तो बात करेंगे बिल्कुल।
1: सिसोदिया जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
3: देवराज जी आपको नमस्कार, कार्यक्रम आप सभी बढ़िया जा रहे हैं। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूँ
1: जी,
3: कि जैसे वृद्ध लोक लहरी कार्यक्रम है ना
1: जी,
3: उनको तो मतलब वृद्ध माध्यमिक कार्यक्रम को न छेड़ा जाए, और उनकी उसकी जगह पे दोपहर में 12:30 बजे लोकगीतों का कार्यक्रम आता है
1: जी,
3: तो वहाँ पे एक फोनिंग कार्यक्रम मतलब किसी दिन निश्चित कर दिया जाए वहाँ
1: जी। ये भी सुझाव आपका अच्छा है, और हमारे अन्य श्रोता भी ये चाहते हैं कि हमारा जो लोकगीत का कार्यक्रम है उसे फोन इन कर दिया जाए, यानी हमारे श्रोता फोन के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजें और हम उनको उनकी पसंद का लोकगीत सुनवाएं।
3: ये जो सर्वोत्तम समय मैंने आपको ये दिमाग से सोच करके मतलब ये आपके लिए बताया कि ये बढ़िया रहेगा।
1: जी जी, ये बात भी आपकी हमने नोट की है, और इस पर हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे चर्चा अवश्य की जाएगी, और अगर होता है तो निश्चित ही आपकी ये मांग है वो पूरी होगी।
3: अच्छा दूसरा कार्यक्रम लोग कहते हैं कि साज और आवाज
1: जी,
3: तो साज और आवाज के लिए मैं तो ये कहूंगा कि सर ये समय की बर्बादी है।
1: किस तरह से?
3: साज और आवाज का कार्यक्रम शुरू कराने के लिए लोग मांग कर रहे हैं।
1: जी जी, देखिए हमारे बहुत तो, सारे श्रोताओं की अलग अलग पसंद हुआ करती है, कोई पुराने गीत पसंद करता है, कोई नए गीत पसंद करता है, और कोई केवल संगीत पसंद करता है।
3: ये तो ठीक है, लेकिन जो साज और आवाज है ना
1: जी,
3: ये थोड़ा समय की बर्बादी है, ये वो कुछ नहीं है, गाना तो भी वही है।
1: सही बात है। लेकिन देखिए ये अपनी अपनी पसंद और अपने अपने विचार पर निर्भर करता है।
3: बिल्कुल आपका बिल्कुल आपका कहना सही है कि सबकी अपनी अपनी पसंद है।
1: और कुछ कहना चाहते हैं सिसोदिया जी?
3: सर यही है कि बस आपसे काफी लंबे समय बाद मेरी बात हो रही है, बस ये सबसे बड़ा ये डेढ़ बार मेरे को फोन लगा है।
1: जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जब आपसे बात हो रही है हमारी,
3: क्योंकि जो थोड़ा सा हमारी टेक्निकी मोबाइल में गड़बड़ी आ रही थी, कभी कभी लाइन व्यस्त रहती है ना ज्यादातर
1: जी जी,
3: इसलिए सर वो मतलब मेरा कॉल लग नहीं पाता है।
1: चलिए सिसोदिया जी, आपने अपनी बात रखी, अपना सुझाव रखा, आगे भी इसी तरह से हमसे लगातार संपर्क बनाए रखिएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं,
3: प्रयास करते हैं, लेकिन लाइन लग जाती है तो बात हो जाती है सर आपसे।
1: जी जी, आपने फोन किया, बहुत बहुत

0: धन्यवाद
1: धन्यवाद सर जी, नमस्कार आप दोनों को।
2: नमस्कार देवराज जी, एक और फोन कॉल आ रही है, उठा लेते हैं।
0: बिल्कुल,
2: हेलो।
3: श्रोताओं की बात फोन कॉल के साथ। सर जी नमस्ते।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
3: हम विपिन कुमार बोल रहे, गांव छोली से।
2: जी जी, बहुत नियमित श्रोता हैं आप हमारे।
3: हाँ, नियमित श्रोता है, जाने वाले श्रोता है। कार्यक्रम बढ़िया चलते हैं, अच्छे लगते हैं।
2: जी, कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं आप सारे?
3: और क्या, अब सुनिए कार्यक्रमों के बारे में सशक्ति की।
2: आज बताइए क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
3: कार्यक्रम में तो यही कहना चाहेंगे कि मंगलवार के दिन 9:30 बजे सुबह के टाइम पे कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा था। अंगदान के बारे में बहुत ही हमको विस्तार से जानकारी दी गई, सब बारे में बात की थी।
2: जी जी,
3: अच्छी लगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने विपिन जी, क्योंकि जहां एक तरफ कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, बहुत बड़ा दान है, इससे बढ़कर दान कोई नहीं है, उसी तरह से अगर अंग दान किया जाता है तो वो भी एक समाज के लिए बहुत कल्याणकारी और बहुत उपयोगी बात है। ये उस पर आपने विस्तार से ये चर्चा सुनी और आपको अच्छी लगी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
3: हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं के कुछ प्रश्न इसमें शामिल कर दिए जाए, इसको हेलो एक दिन सिम्स हेलो डॉक्टर में शामिल किया जाए इसको एक दिन।
0: जी जी, बहुत सही विचार है आपका,
3: क्योंकि श्रोता पूछ लेंगे कौन कौन से अंगों को दे सकते हैं, कौन कौन से को नहीं।
2: वो तो विपिन जी एक विशेष कार्यक्रम का विषय था, अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह के विषय हम सिम्स हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में शामिल करते हैं, तो हमारे जो विशेषज्ञ आते हैं उनसे हमारे अधिकारीगण उनका इंटरव्यू लेते हैं, उसमें श्रोताओं को भी हम शामिल करते हैं।
0: यानी फोन से हमारे श्रोता अपनी समस्याएं रखते हैं और जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स वहां उपस्थित होते हैं वो उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं।
3: और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे जो 8 बजे संजाकू गाने सुनवाए जाते हैं, इस जगह हवा महल कार्यक्रम सुनवा दिया जाए विविध भारती से।
0: जी जी, काफी पुराने कार्यक्रम की बात आपने की। ये कार्यक्रम पहले हम रिकॉर्ड करके प्रसारित किया करते थे, लेकिन अब क्योंकि आप जानते हैं कि कार्यक्रमों की जिस तरह से रूपरेखा बदल रही है, उनका रूप स्वरूप बदल रहा है, तो आप हमारे यहाँ से जो प्रसारित होती हैं झलकियाँ उसका भी आनंद ले सकते हैं। समय समय पर हम आपको हास्य नाटिकाएं, झलकियां और नाटक भी सुनवाया करते हैं, तो उसका भी आनंद लीजिए।
3: शनिवार को जो ब्रज माधवी कार्यक्रम में नाटक आती है वो भी पसंद आती है हमको।
0: बहुत अच्छी बात है, आपको पसंद आती है। जी, आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार।
2: हेलो।
4: हेलो, नमस्ते सर।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: सर, हम सचिन कुमार बोल रहे हैं आगरा से।
0: सचिन जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: सर, हमारे 2 प्रश्न है।
0: जी
4: सर, हमारा पहला प्रश्न तो ये है कि जो एलो आकाशवाणी का कार्यक्रम होता है वो 1 घंटे का हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
0: जी जी, बिल्कुल।
4: और दूसरा प्रश्न ये है, जो 2:30 बजे NCRD का कार्यक्रम आता है वो शनिवार और संडे को भी आ जाए तो बहुत हमको लाभ होगा उससे।
0: जी जी, बिल्कुल सही बात है, लाभ तो होगा और ये कार्यक्रम भी काफी शिक्षाप्रद कार्यक्रम है, क्योंकि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। अभी फिलहाल जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ये ऐसी ही रहने वाली है, अगर संभव हुआ इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है।
4: यस सर, कोशिश करिए सर।
0: जी जी, बिल्कुल।
4: यस सर,
0: और कुछ कहना चाहते हैं?
4: और कुछ तो नहीं कहना चाहते सर, यही कहना चाहते थे हम।
0: जी,
4: कार्यक्रम हमको आपके बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी, ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम।
4: यस सर, थैंक यू सर।
2: नमस्कार।
4: नमस्ते सर।
2: देवराज जी, लगातार श्रोता हमसे निरंतर जुड़ रहे हैं, फोन कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं,
0: लेकिन अब क्योंकि समय कम रह गया है इसलिए हम अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम के लिए फोन नंबर बताए देते हैं, और जो श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर भी बता देते हैं।
2: जी, हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन कर सकते हैं।
0: और संजय जी, अगर श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा नंबर है 9412-25575।
2: जी,
0: और फोन करने का समय है शुक्रवार के दिन 12:30 से।
2: बिल्कुल, उम्मीद है कार्यक्रम में ऐसे ही हमारे श्रोता हमसे जुड़ते रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं से हमको अवगत कराते रहेंगे। तो देवराज जी, आज के कार्यक्रम को अब
0: यहीं विराम देते
2: विराम
0: हैं
2: दें।
0: और श्रोताओं से लेते हैं अनुमति।
2: नमस्कार, नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। आज की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित और संजय सारस्वत की थी। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

और आइए अब चलते चलते सुनते हैं ये गीत नीरज श्रीधर, सुजैन डिमेलो और सलीम की आवाजों में फिल्म लव आजकल से। शब्द रचना इरशाद कामिल की, संगीत निर्देशन प्रीतम का।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defence production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Doonagiri, INS Sanshodhak and INS Agrav were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance

0: insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है. दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है. मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया.
0: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है. वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है. भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है. वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है. इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना. टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं. भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है.
0: द प्राइम मिनिस्टर मेंशनड मेघालय'स रूट ब्रिजेस, सेइंग दीस रूट ब्रिजेस टेक डेकेड्स टू टेक शेप. He shared that India has now applied to have Meghalaya's route bridges included in the UNESCO World Heritage Site Network. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh. The women resolved to remove plastic waste scattered around the area. Mr. Modi also urged people to ensure that the idol of Ganpati Bappa for Ganesh Utsav is made from the soil of this country and crafted by the hands of local potters and artisans. He also urged those who make Ganesh idols to prioritize clay idols. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some more news, Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles Patrick Hermione held bilateral talks at Victoria this afternoon. Both leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honor at the State House, with President Hermione also present. Several agreements were exchanged in a range of fields, including agriculture, finance,

0: Group A match in London today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
2: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल

0: एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता

0: सत्ता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में

0: महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: लीजिए प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

केके की आवाज़ में आपने सुना ये गीत फिल्म रईस से। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत निर्देशन राम संपत का।

आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत फिल्म कच्चे धागे से। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशन नुसरत फतेह अली खान का।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे राघव चैतन्य की आवाज में फिल्म थप्पड़ से। इस गीत को लिखा शकील आजमी ने, संगीत निर्देशन अनुराग सैकिया का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म रॉय से। इस गीत को लिखा अभेंद्र कुमार ने, संगीत निर्देशन अंकित तिवारी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपने सुना ये गीत अरिजीत सिंह और समायरा कोपिकर की आवाजों में फिल्म हेट स्टोरी 2 से। गीत और संगीत आरको का था और इसी के साथ सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:30 पर आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम?

0: हमसे पहुंचेंगे मैडम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन.
1: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो.
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया. मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी.
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं.
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड.
3: आपने तो बचा लिया दीदी.
2: काम से नहीं.
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव.
6: युवाणी सुन रहे सभी साथियों को तहे दिल से हम नमस्कार करते हैं. स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में. साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट न पहुंचे बातों से इतनी तो समझदारी रख, पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रख, दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी जुबान प्यारी रख. इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं हूं आपके साथ खुशबू.

दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिदिन हम एक नई चर्चा के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। और आज की बात में आज हम बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। हम सभी भली भांति उनसे परिचित हैं। विचारों में गहराई, कर्मों में था सम्मान, देश हित था जिनका सबसे बड़ा अभियान। ऐसे युग पुरुष को नमन बार बार, भारत करता उनका सदैव सत्कार। हम सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आधुनिक भारत के आर्थिक परिवर्तन के शिल्पकार के रूप में प्रसिद्ध पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। वो एक विद्वान, कुशल प्रशासक, बहुभाषाविद और दूरदर्शी नेता थे। उनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 28 जून को, यानी कि आज के दिन हम मना रहे हैं। उनका जो जन्म हुआ था, आज के दिन हुआ था 1921 में। इनका जो जन्म स्थान था वो वर्तमान में जो हम तेलंगाना के नाम से जानते हैं, पहले लक्ष्मीपल्ली के रूप में हम जानते थे। वो बचपन से ही मेधावी छात्र थे और उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। कहा जाता है कि वे एक दर्जन से अधिक भाषाएं समझते और बोलते थे। उनका जो राजनीतिक जीवन था, वो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज़्यादा भाग लिया। बाद में वो राज्य और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दायित्व संभालते रहे। 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये दौर भारत के लिए आर्थिक चुनौतियों का समय था। पीवी नरसिम्हा राव केवल राजनेता ही नहीं बल्कि लेखक और अनुवादक भी थे। उन्हें साहित्य, संस्कृति और भारतीय भाषाओं से विशेष लगाव था। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो संकटों में भी मुस्कुराकर राह बना गया, भारत की तकदीर को नई दिशा दिखा गया, ऐसे महान पुरुष को शत शत प्रणाम। नरसिम्हा राव का जीवन बने सबके लिए एक प्रेरणा का धाम। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज की बात के क्रम में, और अब हम आपको डॉक्टर तपेश चतुर्वेदी की लिखी झलकी सुनवाते हैं। शीर्षक है कैंसर।

0: नवीन बेटे, तुम अभी तक सो ही रहे थे।
1: डैडे, रात में एक केस की स्टडी करता रहा, देर में सो पाया था इसीलिए।
0: ऐसा क्या केस है जिसके लिए इतनी रात जागते रहे?
1: एक लड़की का केस है शायद डैडी, उसकी शादी टूटने के कारण उसके दिल दिमाग पर असर हो गया है।
0: तो उसकी शादी कर देना।
1: यही तो मुश्किल है।
0: लेकिन क्यों?
1: इस लड़की के पिता बैंक मैनेजर थे, अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई, अब दहेज कौन देगा?
0: तो क्या लड़के वालों ने?
1: जी हाँ, लड़के वालों ने दहेज की रकम पक्की करने की सोची और एक दिन उसके घर जा पहुंचे।

0: कहिए, किससे मिलना है?
1: मैं दयाशंकर हूँ और ये मेरी।
0: नमस्कार, आइए आइए, अंदर आइए।
1: मुझे सूचना मिली थी, बहुत बुरा हुआ। ईश्वर भले लोगों को कितनी जल्दी अपने पास बुला लेते हैं।
2: बहन जी, वे वास्तव में ही महापुरुष थे, भाग्य पर किसी का बस नहीं। आपकी एक ही बेटी है, जरा उसका ख्याल रखना।
0: हाँ, इसका ख्याल तो आप लोग ही रखेंगे।
2: सो तो ठीक है ललिता बहन, पर अब
0: क्या?
1: कुछ नहीं समधीन जी, बस यह सोच रहे हैं कि अब घर परिवार की गाड़ी कौन चलाएगा।
0: दया शंकर जी, ये गाड़ी अब मैं चलाऊंगी।
1: यह तो बहुत ही अच्छी बात है।
2: बहन, मर्द के बिना औरत बहुत ही कमजोर हो जाती
0: हाँ बहन, ईश्वर ने ये दिन दिखाया है तो वही सहायता भी करेगा।
2: सो तो ठीक है, लेकिन
0: लेकिन मैं समझी नहीं।
1: मैं समझाता हूँ। देखिए, मैनेजर साहब ने 2 लाख में बात पक्की की थी, शादी का खर्चा अलग। अब वे तो रहे नहीं, क्या आप ऐसी स्थिति में यह रकम दे सकेंगी?
0: ए, उन्होंने तो ऐसी कोई बात मुझे नहीं बतलाई थी।
2: बहन जी, मर्दों की बातें तो मर्दों से ही हैं। हो सकता है कि मैनेजर साहब ने आपको ना बताया हो।
0: बहन जी, मैं तो वैसे ही विपदा की मारी हुई हूँ। अगर इस समय 2 लाख आपको दे दिए तो आगे का काम कैसे चलेगा?
2: ये सोचना तो आपका काम है।
1: देखिए, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? शादी तो 1 साल बाद होगी, तब तक कुछ प्रबंध कर लीजिएगा। मैनेजर साहब नहीं रहे तो क्या हुआ? उनकी इज्जत और शान तो वही रहनी चाहिए ना।
0: भाई साहब, दया कीजिए इस अभागिन पर।
1: देखिए बहन जी, मैं मजबूर हूँ।
3: अंकल, आपको इस तरह अपनी लड़की का मोल भाव करना क्या शोभा देता है?
0: बेटी, तू ये क्या कह रही है? तू चुप रह।
3: माँ, ये इंसान नहीं शैतान है। दहेज के लोभी भिखमंगे हैं। मैं इनके यहाँ शादी नहीं करूंगी।
0: संगीता जानती है किससे बातें कर रही है?
3: जानती हूँ माँ, मैं उन भेड़ियों से बातें कर रही हूँ जो समाज को खाए जा रहे हैं। नारी जाति को अपमानित करना इनका पेशा है और ये समाज के कोढ़ हैं।
1: रख लीजिए अपनी समाज सुधारक बेटी को अपने ही पास। चलो जी, यहाँ हम एक पल भी नहीं रख सकते।
0: नहीं भाई साहब, ऐसा ना करिए, ये बच्ची है, इसका बुरा मत मानिए।
2: बहुत हो गया बहन जी, अब आप और क्या चाहती हैं? हम तो पहले ही जानते थे कि एक विधवा अपनी बेटी को दहेज में दे ही क्या सकती है। अब संभालो अपनी लाड़ों को और कर देना किसी बुड्ढे से विवाह, हम तो चलते हैं।
3: हाँ हाँ, जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ।
0: अरे रे, तुझे क्या हुआ बेटी? हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हुआ?

0: और डैडी, तभी से संगीता की यह दशा हो गई है।
1: ओ, वो तो वास्तव में बहुत बुरा हुआ।
0: यस डैडी, मैं भी यही समझता हूँ।
1: बेटे इधर आओ, ये अखबार।

0: बार देखो।
1: इसमें क्या है डैडी?
0: देखो बेटे, मैंने तेरी शादी के लिए एक विज्ञापन निकाला है।
1: मेरी शादी के लिए विज्ञापन? इसकी अभी क्या आवश्यकता पड़ी?
0: बेटे, अब तुम डॉक्टर बन गए हो, शादी तो करनी ही है। विज्ञापन के माध्यम से कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, बस।
1: देखो क्या है विज्ञापन में। एक डॉक्टर है तो सुंदर, शिक्षित, गृह कार्य में प्रवीण कन्या की आवश्यकता है। सेवारत को वरीयता, जाति तथा दहेज का कोई बंधन नहीं। डैडी एक बात
0: कहो
1: कहूं,
0: बेटे।
1: मैं सोचता हूं कि एक सभ्य सामाजिक व्यक्ति का कर्तव्य क्यों ना निभा दूं। डैडी, संगीता एक सुंदर सुशिक्षित लड़की है, वह नौकरी भी करती है। क्या आपके विज्ञापन के अनुसार वह?
0: मैं समझ गया, तू उसे शादी करना चाहता है, यही ना?
1: यदि आपकी इजाजत हो तो।
0: क्यों नहीं, अगर तुझे पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब, आप आइए आइए। माँ माँ, देखो कौन आया है।
3: अरे डॉक्टर साहब, आप
1: क्यों, क्या मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता?
3: क्यों नहीं, आइए बैठिए। बेटी, जा डॉक्टर साहब के लिए चाय ले आ।
1: माताजी, अगर आप अनुमति दें तो एक बात कहूँ।
3: अरे अनुमति की क्या बात है, जरूर कहिए।
1: मुझे संगीता पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ।
2: शादी? और मुझसे? मैं शादी करना नहीं चाहती।
3: नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते।
2: माँ, एक इंजीनियर बनने जा रहे थे और ये डॉक्टर बन चुके हैं। इनके पिताजी जो मांगेंगे, क्या तुम दे सकोगी?
3: डॉक्टर साहब, हम बहुत सताए हुए हैं।
1: मैं जानता हूँ माताजी, अब आप मुझे अपना बेटा ही समझिए और बेटा ही कहिए।
3: बेटे, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे।
1: अच्छा माताजी, मैं चलता हूँ, अब बारात लेकर ही आऊंगा।

0: बेटी रो मत, खुशी खुशी विदा लो और सुखी रहो। जा आशीर्वाद देती हूँ, सुखी रहना।
1: संगीता बेटी, तुम्हारी माँ का पत्र आया है।
2: डैडी, मैं माँ को देखने जाना चाहती हूँ, वो बीमार हैं।
1: जरूर बेटी, तुम शाम को रवि के साथ चली जाना।

0: संगीता बेटी, अब तुम्हारी माँ तो ठीक है ना?
1: जी डैडी, ईश्वर ने उनकी रक्षा कर ली, लेकिन अभी उनकी देखभाल की आवश्यकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उनके पास कुछ दिन रह जाऊं।
0: बेटी, तू बैंक से कब तक छुट्टी लेगी? अब तो तू मैनेजर हो गई है और तेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं।
1: पर डैडी, माँ की देखभाल करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है।
0: देखो बेटी, वहां किसी नौकरानी को लगा दो और तुम कभी कभी जाकर देख आया करो।
1: डैडी, नौकरानी मेरी जैसी देखभाल तो नहीं कर सकती।
0: लेकिन अधिक छुट्टियां लेने पर वेतन कितना कट जाएगा, इस पर भी तो गौर करो।
1: इस समय मुझे वेतन की नहीं बल्कि माँ की चिंता है।
0: लेकिन मुझे तो है, अगर तुमने अपना वेतन इस तरह गवाया तो मेरा लक्ष्य कैसे पूरा होगा?
1: लक्ष्य? कौन सा लक्ष्य?
0: हाँ, तुम मेरा लक्ष्य नहीं जानती शायद, इसीलिए पिछले 8 महीने से तुम अपना वेतन मेरे खाते में जमा नहीं कर रही हो। कहाँ गई ये सारी रकम?
1: माँ की दवाइयाँ खरीदने में।
0: बहुरानी, इस वेतन पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है।
1: क्या? मैं समझी नहीं।
0: तो आज समझ लो, तुम्हारी जैसी लड़की का विवाह अपने डॉक्टर लड़के से, वो भी दहेज में ना क्यों किया है, कुछ जानती हो?
1: मैं तो इतना ही जानती हूँ कि आप भले इंसान हैं इसीलिए।
0: वो तो हूँ, पर मूर्ख नहीं, मैं बैरिस्टर हूँ, अपने तरीके से दहेज ले रहा हूँ।
1: तो क्या मेरा वेतन?
0: हाँ, तुम्हारा वेतन ही मेरा दहेज है।
1: तो आपका विज्ञापन क्या?
0: संगीता बेटी, विज्ञापन तो दुनिया को

0: महिला को धोखा देने को होते हैं, यही ना?
1: तुमने ठीक समझा। अब तुम इस महीने का वेतन मेरे हवाले करो, मैं ही जमा करूंगा।
0: नहीं, अब ऐसा नहीं होगा।
1: क्यों नहीं होगा? क्या मुफ्त में ही डॉक्टर की बीवी बने रहना चाहती हो और इस बंगले के सारे सुख उठाना चाहती हो? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है?
0: जी हाँ, आखिरी।
1: तो मेरा भी फैसला सुन लो, अपना वेतन कल तक मेरे खाते में पहले की तरह जमा कर दो, या फिर माँ के पास ही जाकर।
2: संगीता, तुम्हारी आंखों में ये आंसू, क्या बात है?
0: बात ऐसी ही है जिस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। डैडी ने मुझे घर छोड़ने का आदेश दे दिया है।
2: अरे, ये क्या कह रही हो?
0: ये सच है, जानते हो क्यों?
2: क्यों?
0: इसलिए कि मैं उनके लिए 4 लाख का दहेज पूरा नहीं कर पा रही हूँ।
2: 4 लाख का दहेज? मेरे डैडी और दहेज?
0: मैं जानती थी कि आप विश्वास नहीं करेंगे।
2: संगीता, मैं कैसे विश्वास कर लूं?
0: तो ठीक है, सुबह की प्रतीक्षा कीजिए, मैं डैडी से बातें करूंगी और आप छुप करके सुनिएगा, तब तो विश्वास हो जाएगा।
2: ठीक है ठीक है, लेकिन सुनो, अगर इस आरोप को सिद्ध ना कर सकी तो मैं आजीवन तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा।
0: स्वीकार है। अच्छा, अब सो जाइए।
1: अरे बहू, कहाँ जा रही हो इस सूटकेस लेकर?
0: आपके आदेश का पालन कर रही हूँ।
1: क्या अपना वेतन न देने का पक्का इरादा कर लिया है?
0: मैं अपनी मजबूरी आपको बता चुकी हूँ।
1: अच्छा, तो ऐसा करो, आधा वेतन ही मुझे देती रहो। इस तरह 4 लाख पूरे होने में देर तो अवश्य लगेगी, पर हो तो जाएंगी।
0: डैडी, ऐसा नहीं हो सकेगा।
1: तो साफ सुन लो, वो रुपया तुम्हारा नहीं है, ये कुछ दहेज का रुपया है जिस पर केवल मेरा अधिकार है। यदि आगे तुम रुपया नहीं दे सकते तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं।
0: मैं वही तो कर रही हूँ।
2: तो डैडी, मैं भी यह घर छोड़कर जा रहा हूँ।
1: अरे, तुम अभी तक क्लिनिक नहीं गए?
2: बात मत बदलिए डैडी।
1: कौन सी बात बेटी?
2: वही जो आप संगीता से कह रहे थे। डैडी, मैं अब तक आपको गलत समझ रहा था, आज मेरी आंखें खुल गईं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
1: बेटे, तू मुझे गलत समझ रहा है।
2: नहीं डैडी, आज ही तो मैं आपको ठीक तरह समझ पा रहा हूँ। अफसोस इस बात का है कि आप उन लोभियों से भी गए गुजरे निकले जो खुलकर दहेज मांगते हैं, कम से कम धोखा तो नहीं देते, झूठे आदर्श तो नहीं दिखाते।
1: मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, न मारा पीटा, न धक्के देकर निकाला और न तेल डालकर जलाया भी।
2: डैडी, वकालत वाले दाव पेश न दिखलाइए, यह बताइए कि आपने दहेज लिया और मांगा है कि नहीं।
1: ओह, तो अब तुम मेरी टोपी उछालने की तैयारी में है?
2: नहीं, लेकिन लोगों को यह बतलाने की तैयारी में कि मेरे समाज सुधारक पिता, दहेज विरोधी नेता, वास्तव में दहेज रूपी कैंसर की जड़ें मजबूत करने वाले एक ढोंगी हैं।
1: बहू?
2: आप अभी से बहू कह रहे हैं? आपने तो इसे घर से निकाल दिया, अब यह आपकी बहू रही कहां?
1: नवीन बेटे, ऐसा मत कहो, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए ही मुझे ये करना पड़ा।
2: नहीं डैडी, मेरे भविष्य की चिंता आप ना करें। मैं तो यह समझता हूँ कि आज नवयुवकों को ही कदम उठाने होंगे, तभी इस दहेज रूपी कैंसर से मुक्ति होगी। आप जैसे लोग तो नई नई युक्तियों से इसे और फैलाते रहेंगे।
3: आप सुन रहे थे नाटिका कैंसर, आलेख डॉक्टर तपेश चतुर्वेदी का था। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अंजू सूद, कमला घोष, सुनीता अस्थाना, सुरेंद्र कुमार तोमर, मदन मिश्रा और महावीर सिंह वर्मा। प्रस्तुति आर के पोद्दार की थी।

तो साथियों, आपने आनंद लिया डॉक्टर तपेश चतुर्वेदी की लिखी झलकी कैंसर का। साथियों, आज की बात के क्रम में हमें एक और बात आपसे करनी है और वो है डिजिटल तकनीक। इसके विषय में हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और जहाँ तक बात अगर युवाओं की है तो युवा तो इसमें एकदम एक्सपर्ट ही है। डिजिटल तकनीक का एकीकरण, सबसे पहले जान लेते हैं इसका अर्थ, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य

कृषि, व्यापार, उद्योग, सरकारी सेवाओं और दैनिक जीवन में डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का प्रभावी प्रयोग करके कार्यों को अधिक सरल, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना। आज के समय में साथियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, डिजिटल भुगतान, डेटा विश्लेषण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों के माध्यम से लोगों को घर बैठे अनेक सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। इससे समय और लागत दोनों की ही बचत होती है, उत्पादकता बढ़ती है तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आता है। अब बात कर लेते हैं इनके लाभ के बारे में। जैसे कि अभी हमने बात करी, कार्यों में गति और दक्षता बढ़ती है, समय और धन की भी बचत होती है, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ बनती हैं। देखा जाए, व्यवसायों को डिजिटल माध्यम से नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। सरकारी सेवाएं आम नागरिकों तक पहुंचानी बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है। और अगर बात करें डिजिटल तकनीक की, एकीकरण केवल तकनीक अपनाना नहीं है साथियों, बल्कि जीवन और कार्य करने के तरीकों को अधिक प्रभावी, सुविधाजनक और आधुनिक बनाना है। यदि इसका उपयोग सुरक्षित, जिम्मेदारीपूर्ण और सभी के लिए सुलभ तरीके से किया जाए तो ये डिजिटल भारत के निर्माण और देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तकनीक से बड़े कदम, विकास की हो नई उड़ान, डिजिटल भारत का सपना मिलकर करें हम साकार। ज्ञान और नवाचार की ज्योति हर घर में जलाएं, डिजिटल युग के संग हम भारत को आगे बढ़ाएं। और कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

गम का न कहीं अंधेरा हो, हर घर में खुशियों का डेरा हो, आंखों में उम्मीदें खिली रहें, दिल में सुकून का बसेरा हो, रिश्तों में अपनापन बना रहे, मुस्कुराहट से खिलता चेहरा हो। इसी के साथ अब हमें दे इजाजत, खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will end.

0: encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। लीजिए अब हम आपको जानकारी दे देते हैं आज केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

शाम 6:30 मिनट पर आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया से आंखों दिखा खा।

रात 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम हम अनुप्रसारण करेंगे दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण आप सुनेंगे शाम 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लाभ और खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। मन भावन क्रम में आप कुछ ब्रज लोकगीत भी सुन सकते हैं।

कार्यक्रम एक ही फिल्म के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे जब प्यार किसी से होता है फिल्म के कुछ गीत। समय याद रखिएगा 8:30।

कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद के अंतर्गत उद्धव शतक सुपाठ। कार्यक्रम सबरसा आप सुनेंगे रात 9:30 पर।

सुहाने तराने का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं मृदुल कुमार पांडे।

सब भैयान को हमारी राम राम। भैया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानन को उनकी मिट्टी की सेहत बामे मौजूद पोषक तत्व और उर्वरकन की आवश्यकता की सटीक जानकारी देवे है, जाते किसान सही मात्रा में खाद को उपयोग करके अपनी लागत कम कर सके हैं और फसल की उपज बढ़ा सके हैं। भैया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ते जो प्रमुख लाभ किसान भैयान को हैं उनमें सबसे पहली बात तो जी है कि जब कार्ड में मिट्टी की जांच की जानकारी हुई है, बारह प्रमुख पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, आयरन आदि को विस्तृत ब्यौरा जामे मिले है। कार्ड में मिट्टी की कमी के अनुसार ही उर्वरक डालवे की सलाह दी जाए है, जाते अनावश्यक खर्च बचे है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहे है। भैया अपनी मिट्टी के अनुकूल फसल को चुनाव और वैज्ञानिक तरीका से खेती करवे पे उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा हर दो साल में खेत की मिट्टी की जांच करी जाए है ताकि मिट्टी के

स्वास्थ्य में भई बदलावन को पतो लगायो जाय सके। भैया मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक बनी रहे है, क्योंकि कार्ड में जितनी मात्रा में उर्वरक अनुशंसित किए गए हैं, बाई आधार पे उर्वरकन को प्रयोग करके मिट्टी की सेहत में सुधार की हो जा सके है। जात रहते भैया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अनेकन लाभ हैं। भैया दिना है मन भावन को आज के जा कार्यक्रम में सबसे पहलो लोकगीत सुनवा रहे हैं दामोदर शर्मा के स्वर में, सुनो।

दामोदर शर्मा के स्वर में अभी भैया सुन रहे हैं जी लोकगीत। भैया, खरीफ फसलन को भारतीय कृषि और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहे हो है। जहाँ में महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, मूंगफली, तिल, अरहर, सोयाबीन इत्यादि हैं। भैया, खरीफ की फसल में तीन प्रकार के मुख्य रूप से खरपतवार पाए जाए हैं, घास वर्ग के खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और नरकट खरपतवार। प्रभावी खरपतवार नियंत्रण को मुख्य रूप से यांत्रिक, रासायनिक और जैविक विधिन को उपयोग किया जाए है। यांत्रिक या भौतिक विधिन में शारीरिक रूप से या औजारन की मदद से खरपतवारन को नष्ट किया जाए है, जैसे कि निराई गुड़ाई, जुताई, मल्चिंग। रासायनिक विधिन में फसल की बुवाई के तुरंत बाद रसायन को छिड़काव किया जाए है ताकि खरपतवार अंकुरित ही न हो। दूसरा, खरपतवार उगवे के बाद खड़ी फसल में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट किया जाए है। एक है सांस्कृतिक विधि, जाते हुए खरपतवारन के विकास को रोको जाए है, जहाँ फसल चक्र अपनाए के उचित दूरी और बीज दर को उपयोग करके और फसल के संग कम अवधि वाली दूरी पे फसल उगाए के। अब ही बात करेंगे जैविक विधि की, लेकिन बातें पहले सुन ले हैं जी लोकगीत सावित्री दीक्षित के स्वर में।

भैया आनंद ले रहे हैं जालोक गीत को, स्वर हो सावित्री दीक्षित को। भैया बात कर रहे हैं खरपतवार नियंत्रण की, चर्चा कर रहे हैं जैविक विधि की, जा विधि में प्राकृतिक दुश्मन जैसे कि विशिष्ट कीटन या जीवन को उपयोग करके खरपतवार को नियंत्रित किया जाए है। भैया खरपतवारन को खेत में प्रवेश करवे ते रोकनो ही सबसे बेहतर उपाय है। हमेशा प्रमाणित और खरपतवार मुक्त बीजन को इस्तेमाल करें, खेत की मेड़ और नाली को साफ रखें और खेत में उपयोग होवे वाले औजार और मशीनन को साफ करके ही दूसरी जगह ले जाएं। भैया अब जावाद के बाद सुनवा रहे हैं जी लोकगीत, स्वर है डोरीलाल गोला को।

डोरीलाल गोला के स्वर में भैया ने सुनो जी लोकगीत। अगला लोकगीत है मीरा दीक्षित के स्वर में, भैया सुनो।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम, प्रस्तुत कर रहे थे मृदुल कुमार पांडे। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के स्वरों में आपने सुना चारधाम फिल्म का ये भजन। कार्यक्रम का अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है देव।

0: हरिहरन की आवाज़ में आपने सुना शिव महिमा फिल्म का ये भजन। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उद्धव शतक सपाठ।
1: सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नागर कृत उद्धव शतक की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत संयोजक सुरेश गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता मोहित कुमार।

हे उद्धव, तुम उस चालाक कपटी श्री कृष्ण के भेजे हुए आए हो। तुम हमें पूर्णतः वामन अवतार विष्णु के अंशभूत प्रतीत हो रहे हो, अर्थात जैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में वामन अंगुल का शरीर धारण कर राजा बलि को छल लिया था, वैसे ही तुम हम गोपियों को भी छलना चाहते हो। गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, आप जटिल जाल न फैलाइए। आप कितने भी बढ़ जाओ, परंतु जांच होने पर 22 अंगुल के ही रहोगे, अर्थात तुम अपने को जितना ज्ञानी, योगी अथवा ब्रह्मवादी ठहराओगे और उस प्रकार अपने बड़प्पन का अभिमान करोगे, परंतु परीक्षा करने पर तुम्हारी पोल खुल जाएगी उद्धव, तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। हे उद्धव जी, हम गोपिकाएं तो प्रेम करने वाली नारियां हैं, जबकि तुम योग की शिक्षा दे रहे हो। क्या कभी प्रेम और योग एक साथ रह सकता है? वे तो एक दूसरे के जन्मतः विरोधी हैं। तनिक विचार कीजिए उद्धव, कि हीरा और कांच दोनों एक साथ कैसे रह पाएंगे?

क्योंकि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रेम हीरा है और योग कांच है। कहां हीरा जैसा बहुमूल्य रत्न और कहां कांच जैसी तुच्छ वस्तु, दोनों की भला क्या तुलना। प्रेम और योग में तो षडाष्टक योग है जो विरोधी माना गया है। यही कारण है कि हम प्रेम करने वाली गोपियां योग को अंगीकार नहीं कर सकती।

गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव, यदि तुम श्री कृष्ण को हमारे हृदय के भीतर से निकालना चाहते हो तो उसका उपाय तुम्हारे योग मंत्र में नहीं है। तुम जो योग साधना का उपदेश दे रहे हो उससे श्री कृष्ण का हमारे हृदय से निकलना संभव नहीं है। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि इस योग मंत्रादि से श्री कृष्ण को हमारे हृदय से अलग करने में बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसे मैं पुकार कर कहती हूँ, अर्थात इस उपाय

से तो वे श्री कृष्ण हृदय से निकल नहीं पाएंगे, अपितु और भी गहरे समा जाएंगे। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण को लेकर आकर पहले तुरंत हमारे हृदय से लगा दो और फिर अपने ज्ञान संपन्न चित्त में कोई उपाय सोचो, क्योंकि वे प्रिय प्राणाधार श्री कृष्ण जो जो हमसे दूर बसते जाते हैं, त्यों तो हमारे मन रूपी दर्पण में समाते जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया उद्धव शतक सुपाठ का। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृशक्ति कॉन्क्लेव में कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ सुना। श्री पाठक ने प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए गए सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विभिन्न गांवों में, शहरों में नवाचार हैं, अलग अलग ढंग से लोग काम कर रहे हैं, विशेष रूप से चर्चा जिस समय जो वैश्विक संकट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, हम लोग कारपूल करके चले। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया एक वैवाहिक समारोह में किस ढंग से अतिथियों को उपहार के रूप में सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ हर अतिथि को दिया गया। ये ऐसे आयोजन है, ऐसे कार्यक्रम है जिससे आदमी अपने आप को जुड़ा महसूस करता है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस जनपद में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या त्रेतायुग की स्मृतियों को साकार करती दिखाई दे रही है। राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से अयोध्या विश्वभर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए कई प्रभावकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस में जल्द ही प्रोसेसिंग सेंटर बन जाएगा जिसका लाभ यहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी और व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल है।
3: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुई। कार्यक्रम में मां बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विषय

0: विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 बालिकाओं को SPV वैक्सीन लगाई गई और 10 बच्चों को पल्स पोलियो खुराक भी पिलाई गई। अयोध्या में श्रीराम मंदिर दान मामले में आज पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी कर तलाशी ली और उनके परिजनों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। कल पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। इससे पहले कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। आज से शुरू हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। इसके बाद कल 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में अमरोहा में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत CMO डॉ. रमाकांत सागर ने एक समारोह में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। देवरिया जिले के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5,68,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हापुड़, कौशाम्बी और महोबा सहित विभिन्न जिलों में भी अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। प्रदेश में आगामी 7 दिनों में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृशक्ति कॉन्क्लेव में कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का।
2: दिखा।
1: 20,000 का लोन तुरंत?
2: पता है कौन दे रहा है? ब्याज कितना है?
1: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना
2: जितनी जरूरत,
1: वो भी जांच कर।
2: हो गया इंतजाम।
1: पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: without loss. So India are scoring at a rate of 7 runs per over, which is great after the power play. They again managed to pick up a boundary in this over when Smriti Mandhana actually placed the ball.
1: मन की खामोशी को पढ़ने की कोशिश करता कौन है? सजी हो चेहरे पर मुस्कुराहटें तो दर्द ए दिल समझता कौन है? वादे तो सब करते हैं लेकिन उम्र भर साथ चलता कौन है? मगन है सभी अपनी दुनिया में, किसी का सुख दुख अब पूछता कौन है? जी हाँ श्रोताओं, कोई पूछे न पूछे लेकिन आप सभी का सुख और दुख, अगर सुख में आप नहीं पूछ सकते तो दुख में आप जरूर पूछें। मुस्कुराहट बने किसी के चेहरे की। नमस्कार, आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र खुशबू। स्वागत है आप

श्रोता, स्वागत है आप सभी का शाम सुहानी कार्यक्रम में। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। बुराला खुर्द महाराष्ट्र से हमारे पास ये संदेश आया है आदिनाथ बाग पाटिल, अमोल बाग, गुड़िया कृष्णाली और अशोक देशमुख का। अगला संदेश हमने लिया है वाशिम महाराष्ट्र से ही, इन्होंने ये संदेश हमें भेजा है। मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा परिधि, मायरा सुरोशे हमसे जुड़े हैं। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार का ये मैसेज मिला है। मोहम्मद इकबाल फरीदी, मोहम्मद वक्कार फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर हमसे जुड़े हैं जिला बिजनौर से। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो हमसे जुड़े हैं जनकपुरी सहारनपुर से। किसी भी गीत के लिए इन्होंने हमें फरमाइश लिख भेजी है। अगला संदेश हमने लिया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश का। ये मैसेज हमें मिला है जिला अंबालागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा और अनस, इनके साथ हैं रेहान। अगला संदेश हमें मिला है सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और समस्त हाशमी परिवार हमसे जुड़ा है अजमेर शरीफ से। अगली फरमाइश करता है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा का। योगेंद्र नायक, गीता, निहारिका, सुशांत, सुरेश चौरसिया, फरुखाबादी हमसे जुड़े हैं कासगंज से। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए अगला जो हमें संदेश मिला है ये मिला है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी और सोनम अदीबा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार सुरलकर हमसे जुड़े हैं। दंतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र और नौखेलाल वर्मा का ये संदेश मिला है। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश और प्रमिला बंछोर हमसे जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। अगली फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, इनका संदेश हमें मिला है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर और सोहेल शेख हमसे जुड़े हैं। परिम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, बरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत हमसे जुड़े हैं भटिंडा पंजाब से। महाराष्ट्र से ही अगला हमें ये संदेश मिला है सोपान तायड़े, वसंतराव, पीएस नभारकर और तुषार कारंगले का। गुलाम साबिर राही, ताज मोहम्मद अंसारी, मेहरहा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से इन्होंने हमें ये संदेश लिखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो संदेश मिला है जाफराबाद से सुधाकर जादे, प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश सर्वत, कुमारी प्रणाली, सानवी और कल्पना देशमुख का ये हमें संदेश मिला है। और अगला जो संदेश लिया है आप सभी का प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता नेहरू चौक पैठर से सुरेश यादव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, बेबी सिया, जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। श्रोताओं, सुन लेते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

पीयू, कृष्णा, राधिका, पवन, करण, नमन और इनके सभी परिवारीजन, गांव नोधरा से कोमल मास्टर जसुदा, सूरज, गांव कुमुदवन से रमेश, सुरेश, सुनील, रचना और सभी साथी, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया, अजीत, शिवांश, चुन्ना और इनके मम्मी पापा, होलीगेट न्यू साड़ी एम्पोरियम से विनोद कुमार अग्रवाल और सभी परिवारीजन हमसे जुड़े हैं। अगले श्रोता हमसे जुड़े हैं सुरेश यादव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल बेबी, सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव का हमें अभी संदेश प्राप्त हुआ है। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए नसीब रेडियो श्रोता संघ हमसे जुड़े हैं। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी हमसे जुड़े हैं। महाराष्ट्र से बंडू लोहार, माया, शिवांश, चंद्रकला हमसे जुड़े हैं। और अगला संदेश किसी भी गीत के लिए आया है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया का, स्वर्ण सिंह गेल, दलजी, राजीव, गुरनूर, गुरलाल और अविराज हमसे जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए अगला हमें जो संदेश मिला है वो मिला है राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार, राजबहादुर, शंभू, रजनी और सागर बाबू का, अनिल मोहन, उषा, टिल्लू, मधु नायक हमसे जुड़े हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी हमसे जुड़े हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ से ही भिलाई से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा, हर्ष आहूजा का, यवतमाल से राहुल मनवर, सुरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी का अभी हमें संदेश प्राप्त हुआ है। चोहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया का ये संदेश हमें मिला है। और अगला संदेश हमने लिया है कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता, प्रतीक हिवराले का। अगले पसंदकर्ता श्रोता हैं यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे। बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, रेशमा साहू और राजेश साहू का हमें संदेश मिला है। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव, संजय, ओम कुमार, गुंजेश, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। अनहद और पोत्रा शुरबरत किसी भी गीत के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है आकाशदीप ने, रजनी, शम्मी, सुनीता और लाल चलोत्रा ने। इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है तरन तारन पंजाब से। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु, संस्कृति पौरुष का ये मैसेज मिला है बेंगलुरु से, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप, कमल का हमें ये संदेश मिला है। और अगला संदेश हमने लिया है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीनाक्षी, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े का। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का अगला गीत जिसे गाया है अलका याग्निक ने, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है आंखें।

गांव गोपी की नगरिया से मिठन लाल। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी आप सभी ने। गांव गोपी की नगरिया से मिठन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। गांव नगला पोला से हमसे जुड़े हैं ये श्रोता विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना आंखें फिल्म का ये गीत, और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी आप सभी ने मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी योगेश, संध्या कीर्ति और डीकेश साहू, छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें ये संदेश लिखा है। अगला संदेश हमने

या है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रुद्रा रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़े हैं अमरावती महाराष्ट्र से। अगला संदेश हमने लिया है नादुरा महाराष्ट्र से के हिवराले, साधना प्रतीक हिवराले का। हर्षिता रामेश्वर, रामेश्वर मीनाक्षी मनोहर ताई और प्रभुलाल बागरी हमसे जुड़े हैं झालावाड़ राजस्थान से। नैना सत्यनारायण और फुनदी बाई ये भी झालावाड़ राजस्थान से ही हमसे जुड़े हैं। अगले श्रोता आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या भाई, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। हमारे नाम जरूर शामिल करना जी, ऐसा इन्होंने लिखा है पंजाब से जी। बिल्कुल आप सभी के नाम हमने शामिल किए हैं। दिलीप रामेकर, हर्षा, इन्होंने पुनः एक बार हमें मैसेज किया है। अगला मैसेज पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता का आया है और ये संदेश पैठण से शेख चांद, शेख फूर खान, शेख गुफरान और शेख जाकिया का। निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, नवप्रीत, करमजीत, किसी भी गीत के लिए उन्होंने हमें फरमाइश लिख भेजी है। छत्तीसगढ़ से ही अगला ये संदेश हमें मिला है रोशनलाल देवांगन, कौशल्या और हेमलता डिंपल देवांगन का। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई हमसे जुड़े हैं। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा हमसे जुड़े हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, इनका भी पुनः हमें संदेश प्राप्त हुआ है, तो कृपया दोबारा आप संदेश अपने ना भेजें, एक बार भेजने पर हमने पढ़ लिया है। उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़द, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नहटा का ये संदेश हमने लिया है। मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, नारायण इंगले, आशीष और जिला बुलढाणा से पीएस नवारकर, निर्मला, विशाल नवारकर का हमें संदेश प्राप्त हुआ है। सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद का मैसेज हमें मिला है। इनके साथ हैं तरुण, श्रीनिका और श्री निजा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। किसी भी गीत के लिए अगला फरमाइश हमें भेजी है नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा ने। लुबना अंसारी, सबा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदनी और अंजलि हमसे जुड़े हैं कृष्ण की नगरी, जी हां मथुरा से। जयपुर से आफताब अंसारी का भी हमें संदेश प्राप्त हुआ है। नादेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन का हमें संदेश मिला है, धन्यवाद आपका। अगला हमें संदेश मिला है जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, आलोकिक चंसोलिया का। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती महाराष्ट्र से इन्होंने संदेश हमें लिखा है। ये संदेश हमने लिया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा का। शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी हमसे जुड़े हैं। नबी हसन अब्बासी, शहनवाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ और रसीद बारसी हमसे जुड़े हैं। मारहरा दरवाजा एटा से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, इन्होंने भी हमें पुनः मैसेज भेजा है, कृपया करके दोबारा मैसेज ना भेजें। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गुगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहुजा का हमें संदेश प्राप्त हुआ है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक खुशदिल, आरजू, हसमुख लाल जिंदल,
बुलबुल शक्ति।

इसी गीत की फरमाइश गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा ने हमको ये मैसेज भेजा है। सौरभ निषाद, प्रकाश और बल्लू निषाद, इन सभी का मैसेज भी हमने लिया है। ये मैसेज हमको मिला है पैठण से शेख चांद, फूरखान और गुफरान, इन सभी का भी मैसेज हमने लिया है। महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर का ये संदेश हमें मिला है।

श्रोताओं, इसी के साथ शाम सुहानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बेहद ख्याल रखें और दूसरों को खुशियां बांटते रहें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

उदित नारायण और साधना सरगम को आपने सुना फिल्म कहता है दिल बार बार में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और बेला के स्वरों में। फिल्म का नाम है इम्तिहान।

इम्तिहान फिल्म में आपने सुना कुमार सानू और बेला को। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुन पा रहे हैं। फिल्म का नाम है रातों की बारात। स्वर दिया है आशा भोसले ने।

यादों की बारात, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति परक रचना FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म के चंद नगमे में।

प्रेम अगर सच्चा हो तो इंसान बदल जाता है, बेखबर दिल भी जिम्मेदारी का रास्ता अपनाता है। जब प्यार किसी से होता है यही एहसास सिखाती है, मोहब्बत सिर्फ दिल नहीं पूरा जीवन सजाती है।

जब प्यार किसी से होता है वर्ष 1998 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन दीपक सरीन ने किया। फिल्म में सलमान खान, ट्विंकल खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी प्रेम, जिम्मेदारी, परिवार और आत्म परिवर्तन पर आधारित है।

फिल्म का नायक सूरज एक अमीर बेफिक्र और लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला युवक है। उसकी जिंदगी मौज मस्ती में गुजरती है और फिर उसकी मुलाकात कोमल से होती है। कोमल उसके स्वभाव से प्रभावित नहीं होती और साफ कह देती है कि यदि उसका प्रेम उसे चाहिए तो अपनी आदतें बदलनी होंगी।

सूरज पहली बार किसी से सच्चा प्रेम करता है और अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। कबीर नाम का एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और दावा करता है कि वो सूरज का बेटा है। धीरे धीरे पता चलता है अतीत की एक गलती के कारण वास्तव में कबीर उसी का पुत्र है और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है।

ये सच्चाई सूरज और कोमल के रिश्ते में दरार पैदा कर देती है। सूरज के सामने कठिन चुनाव होता है, अपने बेटे को अपनाए या अपने प्रेम को बचाए। अंततः वो जिम्मेदार पिता बनने का निर्णय कर लेता है और कबीर को स्वीकार कर लेता है।

सूरज के इस बदलाव और जिम्मेदार को देखते हुए कोमल समझ जाती है कि वो पहले वाला लापरवाह इंसान नहीं रहा। अंत में दोनों का मिलन होता है और वो कबीर के साथ एक परिवार के रूप में नई शुरुआत करते हैं।

ये सलमान खान की 1990 के दशक की सबसे पसंद करनी जाने वाली रोमांटिक फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म का संगीत जतिन ललित ने तैयार किया और इसके गीत जो है वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं।

इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने आनंद लिया जब प्यार किसी से होता है फिल्म के चंद नगमों का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने

0: कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान

0: को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सीमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है।

0: जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
3: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talk with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
3: Hum digital public infrastructure mein भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
2: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Seychelles. Addressing the gathering, Seychelles President Hermini said maritime security in the Indian Ocean region remains central to bilateral ties, with the two countries reaffirming their commitment to counter piracy, drug trafficking, illegal fishing and cross-border crime.

0: मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ों में आपने सुना त्रिदेव फिल्म का गीत।
1: Thank you.

किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वरों में आपने सुना ये वादा रहा फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है कुदरत, स्वर दिया है किशोर कुमार ने।

कुदरत फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार को। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

इस समय आप आनंद ले रहे हैं प्रादेशिक लोक संगीत का। अब आप सुन रहे हैं राजस्थानी लोकगीत सरस्वती देवी के स्वर में।

0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं मीना बोराओ का गाया ये गीत।
1: ओया जी सो माले सो।

अब यही संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
1: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a tabla recital by Pandit Sudhir Pandey. Pandit Sudhir Pandey is recognized as one of India's foremost tabla virtuoso. He received his rigorous training from his revered father and guru, late Pandit Arjun Pandey, and his dada guru, Pandit Bhagwat Singh, inheriting the rich traditions of the Banaras, Delhi, and Ajrada gharanas. Drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as Ladant Ka Baj, of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation, and the scholarly rendering of rare traditional compositions preserved through the sacred Guru Shishya Parampara. Through his performances at prestigious festivals and concerts, he has earned immense admiration from musicians, connoisseurs and music lovers alike.
0: आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं घनश्याम सिसोदिया। पंडित सुधीर पांडे अपने कार्यक्रम का आरंभ तीन ताल से कर रहे हैं।
1: In tonight's program, he is accompanied on sarangi by घनश्याम सिसोदिया. He is presenting tabla recital in taal, तीन ताल।

धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट धातुन्न कतट

धा घिंता धा घिंता धा घिंता का धा घिंता धा घिंता धा घिंता का धा घिंता धा घिंता धा घिंता का धा घिंता धा घिंता धा घिंता का धा घिंता धा घिंता धा घिंता।

संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।

0: प्रसाद से प्राप्त किया। बाद में उन्होंने विख्यात मृदंग विद्वान श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
1: Sri N.S. Kalyanaraman is a renowned mridangam artist from Andhra Pradesh belonging to a traditional musical family. He showed keen interest in mridangam from a very young age and received his initial training under Sri M.K.R. Prasad. He later underwent advanced training under the renowned gurus Sri Dandamodi Ramohan Rao and Sri K. Veerabhadra Rao.
0: Sri N.S. Kalyanaraman ne Dr. M. Balamurali Krishna, Sri T.V. Sankar Narayan, Sri T.N. Seshagopalan, Hyderabad Brothers और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
1: श्री एनएस कल्याणराम हैज एकॉम्पनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्णा, श्री टीवी शंकर नारायण, श्री टीएन शेषगोपालन, हैदराबाद सिस्टर्स एंड हैदराबाद ब्रदर्स। He has performed in prestigious sabhas across the country, including Madras Music Academy.
0: Sri N.S. Kalyanaraman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada Akashwani kendra mein 36 varsh ki visisht seva pradan kiya. Aapne Akashwani aur Doordarshan ke kai rashtriya sangeet karyakram mein bhag liya. Aap Kanchi Kamakoti Peetham ka aasthan vidwan raha aur आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
1: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetham and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
2: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याणरामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
1: Tonight, Sri N.S. Kalyanaraman begins his laya vinyasam on mridangam with Mishra Jati Jampetalam.

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान